जय गुरु भैन बोनो, आप सब हनुमान स्वागत करो हो हमारी आज नी हासिनी सभा में। आप सब हम रिया हो आप सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM माते। मैं हूँ आपने हाथे आपनी बोन अंजलि पारेश्वर ने आज वार शुक्रवार ने तारीख 26 मई 2026 नो दाड़ो है। भाई बोनो में देख ही रहा हूँ कि अपने स्टूडियो ने खड़ी में हाजिना पांच बाकी के हैं। तब आपने शुरुआत करा हाजिनी सभा में पुनः प्रसारित थावा वाला कार्यक्रमों ने संक्षिप्त रूपरेखा। भाई बोनो आज सभा ने शुरुआत करेंगा सप्ती की पहले भक्ति श्रद्धा ने आस्था तक जुड़ कार्यक्रम आराधना तक की। इना में अपना हम रंगा आज न सुविचार ने हाथे भक्ति में गीता ने अनस क्रम में अगड़े बढ़ंगा अमारी ने तमारी आवाज कार्यक्रम युवाओं ने आवाज ने आड़ी वा कार्यक्रम आप हमरी शको का ठीक 5:30 माते प्रस्तुत करता जागृति भट्ट ने कशिश पारेश्वर ने हाथे। इनिस कड़ी में बीजा कार्यक्रम ने शुरुआत थागा जेने के बालकन वालकन इटले कार्यक्रम सच्चा बचपन। आ कार्यक्रम आप हमरी शको का ठीक 6 प्रस्तुत करता कशिश पारेश्वर ने मु आपनी बोन अंजलि पारेश्वर ने हाथे। इनिस कड़ी में अपना अगड़े रुक करंगा अपने किसान भाई बहनों तक जुड़ कार्यक्रम खेती बाड़ी। आ कार्यक्रम आप हमरी शको का ठीक 6:30 माते प्रस्तुत करता अंजलि पारेश्वर इटले मु ने मारे हाथे रहेंगा मारे रेडियो साथी जागृति भट्ट। इनिस कड़ी में अपने अगड़े बढ़ंगा अपने अधिकार कानून नियम तक जुड़ कार्यक्रम सच्चा स्वराज। आ कार्यक्रम आप हमरी शको का ठीक 7 प्रस्तुत करता अंजलि पारेश्वर इटले मु ने मारे हाथे रहेंगा मारे रेडियो साथी जागृति भट्ट। इन्हें बाद भयन बनो बीजू कार्यक्रम शो था गा ठीक 7:30 माते कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य। आ कार्यक्रम लेने आवेगा हमारे रेडियो साथी कशिश पारेश्वर ने मनीषा पटेल। इन्हें बाद भयन बनो ठीक 8 आप हमरोगा कार्यक्रम समस्या समाधान। आ कार्यक्रम लेने आवेगा हमारे रेडियो साथी जागृति भट्ट ने मु आपकी बोन अंजलि पारेश्वर। इन्हें बाद भयन बनो मनोरंजन ने थका पूरी भरमार जिनमें आप हमरोगा कार्यक्रम फिल्म संगीत। 9:10 आप हमरोगा कार्यक्रम शामिल का सर। तो बहन बोनो आ तो हती अपने हाजिर ने सभा में प्रसारित थावा वाला कार्यक्रमों ने संक्षिप्त रूपरेखा। अब आपने सभा की शुरुआत करा भक्ति श्रद्धा ने आस्था तक जुड़ कार्यक्रम

0: आज के सुविचार।
1: मन बड़ी ही विचित्र कृति है ये मन। शरीर के किस अंग में बसता है कोई नहीं जानता, किंतु संपूर्ण शरीर इस मन की इच्छा साकार करने के लिए प्रयास करता रहता है। अब यदि मन कुछ खाने का करे तो व्यक्ति उसकी वनों उपवनों की इच्छा साकार करने का माध्यम ढूंढता रहता है। अब यदि मन किसी को शत्रु समझ ले तो व्यक्ति उसे नष्ट करने का हर संभव प्रयास करता है। अब यदि मन किसी से प्रेम करे तो उसकी प्रसन्नता के लिए हर सीमा लांघने के लिए सज्ज रहता है। परंतु जीवन सुखद हो इसके लिए आवश्यक है कि मन खाली हो। इस बांसुरी की भांति भीतर कुछ भी नहीं,

0: न राग है न द्वेष, तब भी तार छेड़ने पर स्वर निकलता है। इसी प्रकार मन को भी भावनाओं से मुक्त रखना आवश्यक है। स्मरण रखिए, मन में कुछ भर के जियोगे तो मन भर के जी नहीं पाओगे। राधे राधे।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: श्री रामचंद्र जी महाराज के भरे दरबार में विभीषण ने ताना मारा, ऐ बजरंगी क्या तेरे मन में भी राम है। हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और सीना फाड़ा, बोले

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: मारू नाम गिल्ली है ने मु मुन्नी नी मोटी बोन हूँ। एक दाड़ो स्कूल थे आवी तो देखियो कि मुन्नी घणी रोई रही थी, तो मु हमजी के ने पानी नी तर लागी रही है। तो मु दूड़ी ने बा कने गई ने कीधु कि बाबा मुन्नी ने तर लागी है तो इन्हें पानी पिवड़ाओ दे। बाए हफ्तिंग ना कही दीदु ने मने कीधु कि 100 महीना हुदी मुन्नी केवल इनी माँ नो दूध ज पिएगा ने अगर आपने मुन्नी ने कहीं भी खवड़ावंगा तो इन्हें दस्त लागी जागा। तो पसे बीजी वगत मुन्नी रोई तो मैंने कान में कही दीदु कि 100 महीना हुदी तने केवल मानो दूधस पीवू है।
2: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है।

0: लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: भाई ने बोलो, आप एक कार्य विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हूं या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हूं, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। हो भाई, अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा। हो वे, प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो। हो वे, आज नाना कदम है ये आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है। वागड़ रेडियो वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें। महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी, जिंदगी में भी। महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश हमारी बातचीत रहने वाली है कि भरपूरता के भाव के साथ जीने की कला क्या है।
0: बिल्कुल,
1: हम मनुष्य का जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है, बल्कि ये हर पल को महसूस करने, समझने और आनंद के साथ जीने की एक सुंदर यात्रा है। आज का इंसान साधनों से भरपूर होकर भी भीतर से खाली महसूस करता है।
0: बिल्कुल,
1: उसके पास पैसा है, मोबाइल है, सुविधाएं, लेकिन मन में संतोष नहीं है। वो हर समय किसी कमी का अनुभव करता रहता है और यही कारण है कि तनाव, चिंता, ईर्ष्या और असंतोष जीवन का हिस्सा बनते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे समय में भरपूरता के भाव के साथ जीना सीखना बहुत जरूरी है।
0: जी जी
1: श्रोताओं, भरपूरता का भाव केवल धन दौलत से जुड़ा नहीं है, ये मन की वो स्थिति है जहाँ इंसान अपने जीवन, संबंध, अवसर और वर्तमान क्षण के प्रति आभार महसूस करता है। कशिश,
0: बिल्कुल,
1: जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि उसके पास जो है वो भी किसी वरदान से कम नहीं, तभी उसके भीतर सच्चा सुख जन्म लेता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम युवाओं की आवाज के माध्यम से हम हमारे श्रोता साथियों को भरपूरता के भाव से रूबरू करवाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में हम उन्हें गीत संगीत के साथ पहले मनोरंजन करवाते हैं, तो क्यों ना श्रोताओं को पहले यहाँ पर एक प्यारा सा गीत सुनवा दे।
1: बिल्कुल, तो आइए साथ ही सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
0: जी हाँ,

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि बात कर रहे हैं भरपूरता के भाव के साथ जीने की कला क्या होती है।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि गीत से पहले आपने बताया था हमारे युवा साथियों को, जागृति जी, कि हमारा जो जीवन है वो केवल सांस लेने का नाम नहीं है, बल्कि ये सपनों, अनुभवों और भावनाओं का एक सुंदर संगम है। देखते हैं साथियों कि हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख शांति के साथ साथ सफलता और संतोष भी चाहता है, लेकिन आज के जो हमारे युवा साथी हैं, वे अक्सर, जागृति जी, तुलना, प्रतिस्पर्धा, असंतोष और तनाव के बीच ही उलझते जा रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में आधुनिक जीवन शैली ने श्रोता साथियों सुविधाएं तो बढ़ाई हैं, लेकिन मन की शांति और आत्मिक संतोष कहीं न कहीं पीछे छूटता जा रहा है।
1: और हम देखते हैं कशिश कि जो मिला है उसे पहचानना बहुत जरूरी है। जीवन में मुस्कान से ही हमें हर चीज को सजाना है।
0: बिल्कुल,
1: आज का समाज तुलना की आग में जल रहा है श्रोताओं। लोग अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते हैं। किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी के पास बड़ा घर है, तो कोई विदेश में घूम रहा है। सोशल मीडिया ने इस तुलना को और बढ़ा दिया कशिश। लोग दूसरों की चमक देखकर अपने जीवन को अधूरा समझने लगते हैं, लेकिन श्रोताओं सच ये है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है।
0: बिल्कुल,
1: जो व्यक्ति हर समय दूसरों को देखकर दुखी होता है वो कभी संतोष का अनुभव नहीं कर सकता।
0: जी हाँ,
1: भरपूरता का भाव हमें सिखाता है कशिश कि अपने जीवन की अच्छाइयों को पहचानो। यदि हमारे पास स्वस्थ शरीर, परिवार का प्यार, सीखने का अवसर और मेहनत करने की शक्ति है तो हम वास्तव में समृद्ध हैं। जिन लोगों के पास ये सब नहीं है उनके लिए सबसे बड़ा सपना होता है।
0: बिल्कुल,
1: श्रोता साथियों आपसे कहना चाहेंगे कि तुलना को छोड़िए, खुद को पहचानिए और हर हाल में खुश रहना सीखिए।
0: बिल्कुल जागृति जी, हम देखते हैं कि वर्तमान के समय में भरपूरता का भाव जीवन को एक नई दिशा देने वाला विचार बनकर सामने आता है। क्योंकि दोस्तों भरपूरता का भाव का मतलब है यह महसूस करना कि हमारे पास जीवन में बहुत कुछ अच्छा है। प्रेम, परिवार, प्रकृति, अवसर, स्वास्थ्य और सीखने की क्षमता। जागृति जी, जब व्यक्ति कमी के बजाय उपलब्धि और आशीर्वादों पर ध्यान देना शुरू कर देता है, तब उसका जीवन सकारात्मकता के साथ साथ अच्छी चीजों से भी भर उठता है साथियों।
1: बिल्कुल,
0: और हमारे आज के युवाओं के लिए तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित रहने लगे हैं।
1: बिल्कुल,
0: सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता को देखकर वे स्वयं, जागृति जी, खुद को कमतर समझने लगते हैं। ऐसे में भरपूरता का जो भाव है जिसे लेकर हम आज बात कर रहे हैं, उन्हें आत्मविश्वास, संतोष और मानसिक शक्ति भी प्रदान कर सकता है।
1: जी हाँ कशिश, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों से हम ये कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, भरपूरता का भाव हमारे विचारों से शुरू होता है।
0: बिल्कुल,
1: जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम महसूस भी करते हैं। यदि हम हर समय ये सोचेंगे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है तो जीवन हमेशा अधूरा लगेगा।
0: जी जी,
1: लेकिन यदि हम ये सोचे कि मेरे पास बहुत कुछ है और मैं आगे भी बेहतर कर सकता हूँ, तो आत्मविश्वास बढ़ता है। सकारात्मक सोच व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाती है।
0: बिल्कुल,
1: प्रकृति हमें भरपूरता का सबसे बड़ा संदेश देती है। सूरज बिना भेदभाव के सबको रोशनी देता है, पेड़ बिना किसी अपेक्षा के फल देते हैं, नदियाँ सबकी प्यास बुझाती है, प्रकृति कभी कमी का अनुभव नहीं करती, इसलिए वो हमेशा बांटती रहती है। मनुष्य भी यदि प्रकृति से सीख ले कशिश, तो उसका जीवन अधिक शांत और आनंदमय हो सकता है।
0: बिल्कुल,
1: और कहा भी गया है कि प्रकृति से ये सीख लो प्यारे, बांटने वाले होते हैं सबसे न्यारे।
0: जी हाँ,
1: साथियों आपसे कहना चाहेंगे कि आज अधिकांश लोग भविष्य की चिंता में वर्तमान का आनंद खो देते हैं। वे सोचते हैं कशिश कि जब अधिक पैसा मिलेगा तब खुश होंगे, जब बड़ा घर होगा तब सुकून मिलेगा।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन श्रोताओं सच्चाई ये है कि खुशी किसी मंजिल में नहीं बल्कि सफर में छिपी होती है। भरपूरता का भाव हमें वर्तमान में जीना सिखाता है।
0: बिल्कुल,
1: जब हम छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने लगते हैं तब जीवन सुंदर लगने लगता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने ये बात सही कही। तो जैसा कि हमारे युवा साथियों से हम भरपूरता के भाव को सीखने की कला को लेकर बातचीत कर रहे हैं, तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन अभी क्यों ना हमारे साथियों को एक प्यारा सा गीत यहाँ पर सुनवाएं।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि हमारी बातें चल रही थी कि भरपूरता के भाव के साथ हमें जीने की कला को सीखना होगा,
1: बिल्कुल,
0: तो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि कशिश, हमने कहा भी था हमारे श्रोता साथियों को कि हमें प्रकृति से सीख लेना है और बांटने वाले जो होते हैं वो सबसे न्यारे होते हैं।
1: जी जी।
0: और यहाँ आपसे कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि छोटी खुशियों को जो अपनाता है वही जीवन में सुख पाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यही कि भरपूरता का भाव केवल लेने में नहीं बल्कि देने में भी होता है।
1: बिल्कुल।
0: जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है वो भीतर से अधिक समृद्ध महसूस करता है। किसी जरूरतमंद की सहायता करता है, किसी उदास व्यक्ति को हंसाता है, किसी बच्चे को शिक्षा देता है, ये कार्य मन को गहरी शांति देने वाले होते हैं। और हम कह सकते हैं कि देने वाला व्यक्ति कभी खाली नहीं रहता, क्योंकि उसका दिल हमेशा प्रेम से भरा होता है।
1: बिल्कुल।
0: समाज में आज स्वार्थ बढ़ता जा रहा है, लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन जब इंसान दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढना सीख लेता है तभी वह सच्ची भरपूरता का अनुभव करता है। कशिश,
1: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज समाज में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कमी के भाव के साथ जी रहे हैं। उन्हें लगता है कि मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, मैं दूसरों जितना सुंदर या सफल नहीं हूँ, मेरी जिंदगी में खुशियाँ कम है या मुझे अच्छे अवसर नहीं मिल पा रहे हैं।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, इस प्रकार की जो सोच होती है वो धीरे धीरे हमारे अंदर तनाव, ईर्ष्या और निराशा की ओर हमें ले जाती है। ऐसे में हमें इसके दुष्परिणामों को पहचानना होगा। जैसे कि जागृति जी, हम देखते हैं कि जब हमारे अंदर कमी के भाव आ जाते हैं तो व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की कमी देखी जाती है।
0: बिल्कुल।
1: जैसे कि श्रोता साथियों, जब व्यक्ति हमेशा स्वयं को दूसरों से कम समझता है तब उसका आत्मविश्वास अपने आप ही कमजोर हो जाता है। इसी के साथ हर समय असंतोष और चिंता व्यक्ति को मानसिक रूप से थका देती है। दोस्तों, ईर्ष्या और तुलना के कारण संबंध हमारे कमजोर होने लगते हैं, यानी कि रिश्तों में भी दूरी देखी जाती है और जो व्यक्ति है वह वर्तमान की खुशियों का आनंद लेना भी भूल जाता है। जागृति जी,
0: बिल्कुल कशिश, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहेंगे। श्रोता साथियों, एक कहानी है, इस कहानी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हमारे खुद के अंदर हमें किस तरह से विश्वास बढ़ाना है।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कि एक छोटी सी कहानी इस बात को और अच्छी तरह समझाती है। एक गांव में दो किसान रहते थे और पहला किसान हमेशा शिकायत करता रहता था कि उसके पास कम जमीन है, बारिश कम होती है और जीवन कठिन है।
1: बिल्कुल।
0: दूसरा किसान छोटी जमीन होने के बावजूद हमेशा खुश रहता था। वो अपने खेतों में मेहनत करता, प्रकृति का धन्यवाद करता और जो मिलता उसमें संतोष रखता।
1: जी जी।
0: एक दिन पहले किसान ने पूछा कि तुम हमेशा खुश कैसे रहते हो? तब दूसरे किसान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कशिश, कि मैं हर दिन ये सोचता हूँ कि भगवान ने मुझे मेहनत करने का अवसर दिया है, परिवार दिया है और दो वक्त की रोटी दी है।
1: बिल्कुल।
0: जब इतना कुछ है तो दुख किस बात का? धीरे धीरे पहले किसान को भी समझ आने लगा कि दुख परिस्थितियों में नहीं बल्कि सोच में होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि भरपूरता का भाव बाहरी चीजों से नहीं बल्कि अंदर की सोच से आता है।
1: जी हाँ।
0: इसलिए कहा गया है कि सोच बदलेंगे तो जीवन अपने आप बदल जाएगा और हमारा हर दिन खुशियों से भर जाएगा। तो श्रोता साथियों, आपसे इस कहानी के माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो युवा साथी है वो उनमें असंतोष बहुत तेजी से बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल।
0: वे जल्दी सफलता चाहते हैं, यदि उन्हें तुरंत परिणाम नहीं मिलता कशिश तो वे निराश हो जाते हैं। लेकिन भरपूरता का भाव धैर्य सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि हर छोटा प्रयास भी महत्वपूर्ण होता है। धीरे धीरे की गई मेहनत ही बड़े सपनों को पूरा करती है। और जो युवा अपने वर्तमान अवसरों की कद्र करते हैं कशिश, वही आगे चलकर बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: जबकि जो हर समय शिकायत करते रहते हैं वे अवसरों को पहचान नहीं पाते।
1: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि प्रकृति भी हमें भरपूरता का संदेश देती है। जैसे कि दोस्तों, जब भी हम प्रकृति को ध्यान से देखते हैं तो वह हर पल हमें भरपूरता का ही पाठ पढ़ाती है।
0: बिल्कुल।
1: जैसे कि सूरज बिना भेदभाव के सभी को प्रकाश देता है, पेड़ अपने फल और छाया सबको बांटते हैं। जागृति जी, नदियाँ निरंतर बहती रहती है और फूल अपनी खुशबू हर दिशा में फैलाते हैं। दोस्तों, प्रकृति कभी कमी की शिकायत नहीं करती, वह केवल देना जानती है। और मनुष्य यदि प्रकृति से ये सीख ले जागृति जी कि बांटने में ही सच्ची समृद्धि है, तो उसका जीवन और सुंदर बन सकता है। हम देखते हैं कि जब हम हमारे अंदर भरपूरता का भाव विकसित करते हैं साथियों, तो हमें सबसे पहले कृतज्ञता की आदत को अपनाना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: जैसे कि हर दिन उन चीजों के लिए हम धन्यवाद दे जो हमारे जीवन में है। माता पिता का प्रेम हो गया, मित्रों का साथ हो गया, शिक्षा के अवसर हो या स्वस्थ शरीर। श्रोता साथियों, इन सभी चीजों के लिए हमें धन्यवाद देना सीखना चाहिए। हम देखते हैं कि हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है। दूसरों से तुलना केवल दुख बढ़ा सकती है। ऐसे में सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली चमक हमेशा वास्तविकता नहीं होती है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए स्वयं को स्वीकार करना भी आप सीख सकते हैं युवा साथियों।
0: जी हाँ कशिश, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि भरपूरता के भाव के साथ जीना एक कला है और ये कला हर व्यक्ति सीख सकता है। बिल्कुल। उसके लिए हमें अपने विचार बदलने होंगे, वर्तमान को स्वीकार करना होगा और छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना होगा।
1: जी जी
0: श्रोताओं, जब इंसान शिकायत छोड़कर आभार व्यक्त करना शुरू करता है तभी उसका जीवन बदलने लगता है।
1: बिल्कुल,
0: जीवन में हमेशा सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, कठिनाई आएंगी, संघर्ष होंगे और कभी हार भी मिलेगी, लेकिन श्रोताओं यदि मन में भरपूरता का भाव हो तो इंसान हर परिस्थिति में उम्मीद और साहस बनाए रखता है।
1: जी जी,
0: वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में सफल और खुश कहलाता है। कशिश, हमें याद रखना होगा श्रोताओं कि जीवन की असली समृद्धि बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि मन की शांति में है, रिश्तों के प्रेम में है, संतोष में छुपी होती है। इसलिए हर दिन मुस्कुराइए, धन्यवाद कहिए और अपने जीवन की अच्छाइयों को पहचानिए। कहा गया है कि कमी नहीं खुशियों को गिनना सीखिए, भरपूरता के भाव के साथ जीना सीखिए। जो जीवन को धन्यवाद कहना जान गया वो हर हाल में मुस्कुराना सीख गया।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो युवा साथियों आपसे यही कहना चाहेंगे कि जीवन में हमेशा ये मत सोचिए कि आपके पास क्या नहीं है, बल्कि ये देखिए कि आपके पास कितना कुछ सुंदर है।
0: बिल्कुल,
1: हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है जागृति जी। ऐसे में हमें अपने जीवन को शिकायतों से नहीं बल्कि धन्यवाद और सकारात्मकता से भरना चाहिए। याद रखिए साथियों, जिस व्यक्ति के मन में कृतज्ञता और संतोष होता है वही वास्तव में सबसे समृद्ध होता है।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि श्रोता साथियों आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की, अब देख पा रहे हैं कि समय चला है विदा लेने का।
1: जी
0: विदा हम जरूर लेंगे, पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल,

0: साथ ही इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद है कि जो बातें रही कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करो। थोड़ू सू व्यायाम ने तात काढ़ी नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपना वंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम सच्चा बचपन सुनने वाले सभी साथियों को आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि श्रोता साथियों, हमारा विशेष बाल जागरूकता कार्यक्रम जहां हम जीवन की छोटी छोटी बातों में छिपी बड़ी सीख को लेकर आते हैं, आज का हमारा श्रोता साथियों विषय ही बड़ों का सम्मान करना क्यों जरूरी है। साथियों, हम जब अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं लोग हमें प्यार दें, हमारी बातें समझें, हमारा सम्मान करें। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि सम्मान पाने की शुरुआत कहाँ से होती है? वह शुरुआत होती है साथियों, अपने से बड़ों का सम्मान करने से। आज के समय में अक्सर देखा जाता है साथियों कि बच्चे जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बड़ों की बात काट देते हैं, उनकी सलाह को पूरा नहीं समझ कर नजरअंदाज कर देते हैं। धीरे धीरे यह आदत श्रोता साथियों रिश्तों में दूरी और व्यवहार में कठोरता ला देती है। लेकिन श्रोता साथियों, सच यह है कि बड़ों का अनुभव हमारे जीवन की सबसे बड़ी सीख होता है। उन्होंने जीवन के उतार चढ़ाव देखे होते हैं, संघर्ष किए होते हैं, गलतियों से सीखा होता है। साथियों, जब वे हमें कुछ समझाते हैं तो उनके अनुभव में हमारे लिए भला छिपा होता है। तो श्रोता साथियों, आज के कार्यक्रम में इस विषय पर हमारे आपसे ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं यह गीत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय तो मैंने बता ही दिया था कि आज हम बात करने वाले हैं बड़ों का सम्मान करना क्यों जरूरी है। श्रोता साथियों, आज की कहानी है दो सहेलियों की, सोनम और रिया की। रिया आधुनिक सोच में खोकर बड़ों की बातों को महत्व नहीं देती और सोनम समझती है कि बड़ों का सम्मान सिर्फ संस्कार नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली ताकत है। इन दोनों की बातचीत से श्रोता साथियों हमें यह समझाएगी कि बड़ों का सम्मान करना क्यों जरूरी है, उनकी सीख हमारे जीवन में कैसे काम आती है और सम्मान से रिश्तों में मिठास कैसे बनी रहती है। तो आइए साथियों, सुनते हैं इस कहानी को।
1: सोनम, आज फिर दादी मुझे समझाने लगी कि मोबाइल कम चलाओ, समय से सो, बड़ों से ठीक से बात करो। मुझे समझ ही नहीं आता कि बड़े हर समय टोकते क्यों रहते हैं। कभी तो मन करता है कि किसी की बात न सुनो। रिया, हो सकता है उस समय तुम्हें उनकी बातें अच्छी न लगे, लेकिन उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। जब वे हमें समझाते हैं ना, तो उसमें उनका अनुभव और तुम्हारी भलाई दोनों छिपी हुई होती है, जो तुम शायद देख नहीं पा रही हो। लेकिन हर समय समझाना भी तो अच्छा नहीं लगता ना। ऐसा लगता है जैसे हम कुछ जानते ही नहीं है।
2: नहीं रिया, ऐसा नहीं है। बड़े हमें छोटा नहीं समझते हैं, बल्कि हमें गलत रास्ते से बचाना चाहते हैं।
1: अच्छा, एक बात और बताऊं मैं तुम्हें। कल मम्मी ने कहा कि खाना खाते समय मोबाइल मत चलाओ। अब बताओ कि इसमें क्या समस्या है। मैं अपना काम भी तो कर रही हूँ और वीडियो देख रही थी।
2: रिया, तुम्हें लगता है कि तुम सही हो, लेकिन समस्या यही है कि हम एक साथ कई चीजों में उलझ जाते हैं और किसी चीज पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते। बड़े हमें अनुशासन सिखाते हैं ताकि हमारी आदतें अच्छी बने।
1: रहने दे सोनम, तुझसे तो कुछ कहना ही बेकार है। तू तो हर बार बड़ों का ही पक्ष लेती है।
2: क्या बोलूं अब मैं तुम्हें रिया, क्योंकि मैंने देखा है कि उनकी बातें बाद में सही साबित होती है।
1: ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। आज मैंने गुस्से में दादी से ऊंची आवाज में बात कर ली। अब मम्मी नाराज है, लेकिन मुझे भी तो गुस्सा आ गया था। अब मैं क्या कर सकती हूँ।
2: रिया, गुस्सा तो सबको आता है, लेकिन बड़ों से बात करते समय शब्दों का ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि सम्मान जो है वो सिर्फ झुककर नमस्ते करने से नहीं होता है, बल्कि हमारे व्यवहार और बोलने के तरीके से भी होता है। और अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं, तो जो तुमने किया वो बिल्कुल गलत है।
1: शायद तुम सही कह रही हो, क्योंकि अब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं गलत थी, क्योंकि मेरे डांटने के बाद दादी भी चुप हो गई थी।
2: हाँ, क्योंकि उन्हें दुख हुआ होगा। हम देखते हैं कि बड़े जो होते हैं ना, वो बाहर से तो मजबूत दिखते हैं, लेकिन अपने बच्चों की बात को वो दिल से लगा लेते हैं। और जो दादी है वो तुमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन तुम्हारी थोड़ी सी तेज आवाज उनके दिल को छू गई, जिसके कारण दादी दुखी हो गई।
1: सोनम, अगर ऐसा ही है तो एक बात मुझे याद आ रही है कि आज दीदी भी मुझे बता रही थी कि उन्होंने कितनी मुश्किलों में घर संभाला।
2: अच्छा,
1: पहले मैं सोचती थी कि वे पुरानी बातें करती हैं, लेकिन आज लगा कि उन्होंने सच में संघर्ष किया होगा।
2: हाँ रिया, यही तो बात है। बड़े सिर्फ उम्र में बड़े नहीं होते, अनुभव में भी बड़े होते हैं। उनकी बातें हमें गलतियों से बचाती है, और हम छोटे गलतियों पे गलतियां किया करते हैं।
1: शायद हम जल्दी में उनकी बातों का मतलब ही नहीं समझ पाते, तभी तो उनकी बातों को अहमियत नहीं देते। और वो कुछ कहते हैं तो टाल कर गुस्सा कर देते हैं कि आपको क्या समझ है।
2: बिल्कुल रिया, और जब हमें समझ में आता है तब तक तो कई बार देर भी हो चुकी होती है, और फिर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहता, हम सिर्फ पछतावे में ही रहते हैं।
1: तुम सही कह रही हो। मैं आज ही जाकर दादी से प्यार से बात करूंगी, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या बदलाव आया है ढंग से बात करने का।
2: ठीक है, चलो कल मिलते हैं।
1: बाय बाय। अरे अरे सोनम, कहाँ जा रही हो तुम?
2: कहीं नहीं, ये मम्मी ने बाजार से कुछ सामान लाने को कहा था, वही लेने जा रही हूँ।
1: अच्छा, मैंने तुम्हें कल बताया था ना कि तुम बड़ा बड़ों का पक्ष लेती हो। तुम सही कह रही थी और मैं बहुत गलत थी। आज मुझे समझ में आ गया कि बड़ों का सम्मान करना कितना जरूरी है।
2: देखा, मैंने कहा था ना कि हर बार बड़े गलत नहीं होते।
1: तुम सही कह रही हो। आज मैंने दादी से प्यार से बात करनी शुरू की, घर का माहौल भी बहुत अच्छा लगने लगा। पहले हर बात पर हम गुस्सा करते थे, कोई किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करता था और मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लगता था, लेकिन जब से मैंने सबसे अच्छे से बात करना शुरू किया है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है।
2: हाँ रिया, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो सम्मान होता है वो रिश्तों में मिठास लेकर आता है। जब हम अपने बड़ों की इज्जत करते हैं और घर में सबसे अच्छे से बात करते हैं ना, तो घर में प्यार और अपनापन भी बढ़ता है।
1: बिल्कुल, और जो दूसरों का सम्मान करना सीखता है वही जीवन में सम्मान भी पाता है।
2: बिल्कुल
1: सोनम, अब मैं कोशिश करती हूँ कि दादी की बातें ध्यान से सुनूं। कभी कभी उनके साथ बैठकर बातें भी करती हूँ, मुझे अब बहुत अच्छा लगता है।
2: हाँ रिया, और तुमने देखा, जब हम समय देते हैं और सम्मान करते हैं ना, तो रिश्ते कितने सुंदर हो जाते हैं।
1: हाँ, क्योंकि जब से मैं दादी से अच्छे से बात करती हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक अंदर से अलग ही ऐसा लगता है कि मैं जीवन में बहुत सारी चीजें अपने आप ही कर पाती हूँ। और अब मुझे ये बात भी समझ में आ गई है कि बड़े हमें रोकते नहीं हैं, हमें संभालते भी हैं, क्योंकि उनके जो अनुभव है वो हमें हमारे जीवन में अपनाने से एक अलग ही अनुभव मिल पाता है।
2: हाँ रिया, और यही समझ हमें एक अच्छा इंसान बनाती है।
1: तो दोस्तों, बड़ों का सम्मान करो, दिल से उनका मान करो, उनकी सीख को अपनाओ और जीवन सुंदर बनाओ।
0: साथियों, जैसा कि हमने ये सुना, सम्मान शब्द छोटा है लेकिन इसकी ताकत बहुत बड़ी है। जब एक बच्चा अपने बड़ों का सम्मान करता है तो वह सिर्फ अच्छे संस्कार नहीं सीखता, वह धैर्य, विनम्रता और रिश्तों की अहमियत भी सीखता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर अपनों के लिए समय निकालना भूल जाते हैं। कई बार बड़े सिर्फ इसीलिए चुप हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब कोई उसकी बात नहीं सुनना चाहता। लेकिन याद रखिए साथियों, जिस घर में बड़ों का सम्मान होता है उस घर में बरकत, शांति और प्यार हमेशा बना रहता है। तो श्रोता साथियों, आज ही एक छोटा सा संकल्प लें, बड़ों से प्यार से बात करेंगे, उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और उनके अनुभवों को अपनी ताकत बनाएंगे। तो श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ में। तो आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

तो दोस्तों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम सच्चा बचपन अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि हमारी आपसे आज जो भी बातें रहीं, गीत संगीत रहे, वो आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है दोस्तों, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.com।

तुम जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल तू मेरी जान

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: भाई ने बोलो, आप एक कार्य विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपने रह हूं या आपने ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपने हाल हूं, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। हो वे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
2: हो वे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
1: हो वे आज नाना ना कदम है, ये आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
2: वागड़ रेडियो वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: भाई ने बोलो, आप एक आरे विचार करियो है कि जैया पेड़ की छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राखे है। हो भी अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा। होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो। होवे आज नाना कदम है, ई आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
2: वागड़ रेडियो वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बुनों ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बुन आप हमरी रहो आपड़ो सामुदायिक रेडियो वागड रेडियो 90.8 FM माते ने आप सब लोग घणे मान स्वागत करो हो अमारे आज से कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जिम के भाई बोनो अमे अमारे टेम माते हाजिर थी सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ली नी एक नया विषय ने हाथे। तो भाई बोनो आज हमारे कार्यक्रम में आप तक की बातचीत नु विषय है कि जैविक खेती ने माध्यम तक की आपड़े लागत कम ने आय ने हरती वधावी सका ने आ आपड़े पहले हरते महत्वपूर्ण है। तो वैन बोनो अड़ा विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में अमारी आप तक घना कनी वाते थाएंगा पण कार्यक्रम शुरू करा एने पहले आपने हमरा विदा गीत ने मोरे करा आपड़ी वाते। तो बाइन बोनो आप हमवर्त रेजू आपड़ो रेडियो आपड़ी वाते वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: होगा कि हमारी मिट्टी, हमारा बीज और हमारी स्थानीय संसाधन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।
1: बिल्कुल।
0: यदि हम इन जैविक खेती को अपनाकर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें तो हमें कम लागत में अधिक लाभ के साथ स्वस्थ परिवार, समृद्ध किसान और टिकाऊ भविष्य की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ा सकते हैं।
1: बिल्कुल। तो सर, जैसा कि आपने कार्यक्रम में बहुत ही प्यारा सा संदेश हमारे श्रोता साथियों को दिया है, तो आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: जी धन्यवाद।
1: બહેન બોનું, જેમ કે આપણે આપણા વ્યાસમાં માંગેલાલજી જોડે તક હતા ને એણે આપણને ઘણી અસલ તરીકા થકી ઘણા કાની વાતે બતાડી હૈ. આશા કરો હું કે આ હંગરી વાતે આપને ગમી હોંગા, કેમ કે હવે ટાઈમ થઈ ગયો હૈ આપણે અણસ કાર્યક્રમ થકી સૂટા પડવાનું. તો સૂટા તો પડ, પણ સાથે પહેલા હમરી લે એક ઓર ગીત ને મોરે પડા સૂટા.

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि, हमारे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में बातचीत का विषय रहेगा कि स्व अर्जित संपत्ति किसी को भी दे सकते हैं माता पिता।
0: बिल्कुल,
1: कहने का तात्पर्य ये श्रोता साथियों कि मनुष्य अपने जीवन भर कठिन परिश्रम करता है, धन कमाता है, घर बनाता है और संपत्ति अर्जित करता है।
0: बिल्कुल,
1: ये संपत्ति केवल धन का ढेर नहीं होती अंजलि, बल्कि उसमें उसके संघर्ष होते हैं, त्याग होती है और मेहनत की कहानी छिपी होती है।
0: जी जी,
1: जब माता पिता अपनी मेहनत से कोई संपत्ति बनाते हैं तो उसे स्व अर्जित संपत्ति कहा जाता है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसी संपत्ति पर सबसे पहला अधिकार उसी व्यक्ति का होता है जिसने उसे अपने परिश्रम से कमाया हो।
0: बिल्कुल,
1: इसीलिए माता पिता अपनी स्व अर्जित संपत्ति अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी, इस विषय पर श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन क्यों न कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम हमारे साथियों को सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम सच्चा स्वराज में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: ते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय बताया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बात रहने वाली है, स्वार्जित संपत्ति किसी को भी दे सकते हैं माता पिता।
1: बिल्कुल। तो जागृति जी, जैसा कि हम जान पाए कार्यक्रम के माध्यम से शुरुआत में कि परिवार केवल रिश्तों का नाम नहीं होता बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और भावनाओं का भी आधार होता है। परिवार में संपत्ति को लेकर अक्सर ये माना जाता है कि माता पिता की हर संपत्ति पर सभी बच्चों का समान अधिकार होता है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन भारतीय समाज और कानून में स्वअर्जित संपत्ति यानी कि अपनी मेहनत और कमाई से अर्जित की गई संपत्ति को अलग दृष्टि से देखा जाता है। आज कई परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद बढ़ते जा रहे हैं। भाई भाई के बीच माता पिता का अपमान, रिश्तों में कड़वाहट और अदालतों तक पहुँचने वाले मामले इस बात का संकेत है कि संपत्ति के साथ भावनात्मक समझ भी जरूरी है। ऐसे में श्रोता साथियों, हमारे लिए समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि माता पिता अपनी स्वअर्जित संपत्ति को अपनी इच्छा के अनुसार किसी को भी दे सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: यह निर्णय उनका व्यक्तिगत और कानूनी अधिकार माना जाता है।
0: जी हाँ अंजलि, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि भारतीय समाज में अक्सर ये माना जाता है कि माता पिता की संपत्ति केवल बच्चों की होती है।
1: बिल्कुल।
0: कई बार बेटे ये सोच लेते हैं कि माता पिता की हर चीज पर उनका अधिकार है, लेकिन कानून और नैतिकता दोनों ये कहते हैं कि यदि संपत्ति माता पिता ने स्वयं कमाई है तो वे उसे अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी संतान, रिश्तेदार, संस्था या जरूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: ये उनका वैधानिक और नैतिक अधिकार है। कहा भी गया है कि अधिकार वही सच्चा कहलाता है जो मेहनत से पाया जाए। स्वार्जित संपत्ति और पैतृक संपत्ति में अंतर समझना बहुत जरूरी है श्रोता साथियों। हम देखते हैं अंजलि कि पैतृक संपत्ति वो होती है जो पीढ़ियों से चली आ रही होती है।
1: बिल्कुल।
0: जिसमें परिवार के अन्य सदस्यों का भी हिस्सा होता है। लेकिन स्वअर्जित संपत्ति वो है जिसे किसी व्यक्ति ने अपनी मेहनत, नौकरी, व्यापार या संघर्ष से अर्जित किया हो। इस संपत्ति पर केवल उसी व्यक्ति का अधिकार होता है। माता पिता चाहे तो इसे बराबर बांट सकते हैं, किसी एक संतान को दे सकते हैं या किसी सामाजिक कार्य में भी दान कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: यानी कि श्रोता साथियों, जो खुद कमाया जाता है वही स्वअर्जित कहलाता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, श्रोता साथियों को बताना चाहेंगे कि भारतीय समाज में संपत्ति केवल जमीन या घर नहीं होती बल्कि उससे भावनाएं भी जुड़ी होती हैं।
0: बिल्कुल।
1: कई माता पिता पूरी जिंदगी मेहनत करके अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार संपत्ति के कारण परिवार में झगड़े, ईर्ष्या, गलतफहमियां रिश्तों में दूरी बढ़ने लगती है।
0: बिल्कुल।
1: जब रिश्तों से ज्यादा महत्व संपत्ति को मिलने लगता है तब परिवार कमजोर होने लगता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि जिस संपत्ति को किसी व्यक्ति ने पूरी मेहनत और संघर्ष से कमाया हो उस पर निर्णय लेने का अधिकार भी उसी व्यक्ति का होना स्वाभाविक माना जाता है।
0: जी हाँ।
1: माता पिता अपनी जरूरत, परिस्थितियाँ, देखभाल, विश्वास को ध्यान में रखकर निर्णय ले सकते हैं। कई बार जागृति जी, वे उस बच्चे को संपत्ति देना चाहते हैं जिसने उनकी सेवा की हो या कठिन समय में साथ दिया हो। ये उनका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है।
0: जी हाँ अंजलि, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हमें कहना चाहेंगे कि आज के समय में कई माता पिता अपने बच्चों के व्यवहार से दुखी रहते हैं। कुछ बच्चे माता पिता की सेवा और सम्मान करते हैं जबकि कुछ केवल संपत्ति पाने की लालसा रखते हैं। ऐसे में माता पिता ये सोचते हैं कि जो संतान उनका आदर करती है, उनकी देखभाल करती है, वही संपत्ति की वास्तविक हकदार है। इसीलिए वे अपनी स्वअर्जित संपत्ति उसी को देना चाहते हैं। इसमें कोई अन्याय नहीं है श्रोताओं, क्योंकि संपत्ति उनके जीवन की कमाई हुई होती है। कई बार समाज में भ्रम फैलाया जाता है अंजलि, बेटों को ही संपत्ति का अधिकार है और बेटियों को नहीं है, लेकिन आज कानून बेटियों को भी बराबरी का अधिकार देता है।
1: बिल्कुल।
0: यदि माता पिता चाहे तो अपनी स्वअर्जित संपत्ति बेटी को भी दे सकते हैं। यह न केवल कानूनी रूप से सही है बल्कि सामाजिक समानता की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। बेटियां भी माता पिता की उतनी ही सेवा और देखभाल करती है जितने की बेटे करते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हम बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को जान पा रहे हैं। ये बातें निरंतर आगे यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल। तो आइए साथ ही सुन लेते हैं यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हम जान पा रहे थे कि स्व अर्जित संपत्ति माता पिता किसी को भी दे सकते हैं, जैसा कि हमने जाना कि ये क्या होता है। अब यही बात करें तो आज कई परिवार संपत्ति विवादों के कारण टूट रहे हैं। भाई भाई के बीच मुकदमे, माता पिता पर दबाव, भावनात्मक दूरी, आपसी बातचीत बंद होना, ये समस्या तेजी से बढ़ रही है। कुछ लोग माता पिता की सेवा प्रेम से नहीं बल्कि संपत्ति पाने की उम्मीद से करने लगते हैं।
1: बिल्कुल,
0: यह सोच पारिवारिक मूल्यों को कमजोर कर रही है। श्रोता साथियों, कई बुजुर्ग संपत्ति के कारण मानसिक तनाव में रहने लगते हैं। कुछ मामलों में उन पर संपत्ति अपने नाम करने का दबाव बनाया जाता है। उन्हें भावनात्मक रूप से कमजोर किया जाता है, उनकी इच्छा का सम्मान नहीं किया जाता। ऐसी स्थिति जागृति जी बुजुर्गों को भीतर से तोड़ सकती है।
1: जी हाँ।
0: हर माता पिता को यह अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए कि वे अपनी संपत्ति के बारे में स्वतंत्र निर्णय ले सके।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि माता पिता केवल संपत्ति नहीं बल्कि संस्कार भी देते हैं। यदि संतान अच्छे संस्कार वाली हो तो कभी माता पिता पर संपत्ति के लिए दबाव नहीं डालती, वो उनके निर्णय का सम्मान करती है।
0: बिल्कुल,
1: संस्कारी संतान ये समझती है कि माता पिता की खुशी सबसे महत्वपूर्ण है, संपत्ति से अधिक मूल्यवान उनका आशीर्वाद होता है। आज हम देखते हैं अंजलि कि कई वृद्धाश्रम ऐसे बुजुर्गों से भरे पड़े हैं जिन्हें उनके अपने बच्चों ने अकेला छोड़ दिया है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे माता पिता जब अपनी स्वार्जित संपत्ति किसी संस्था, आश्रम या जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर देते हैं तो समाज में चर्चा शुरू हो जाती है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन हमें समझना होगा श्रोताओं कि उनका ये व्यक्तिगत अधिकार है। यदि संतान अपने कर्तव्य को भूल जाए तो माता पिता भी अपने अधिकारों का उपयोग कर सकती है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए कहा गया है श्रोता साथियों कि कर्तव्य जो निभाने भूले अधिकार भी उनसे दूर हो जाते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने बहुत सही कहा। इसी के साथ श्रोता साथियों, भारतीय कानून जो है वो स्व अर्जित संपत्ति के मालिक को अपनी संपत्ति अपनी इच्छा से देने का अधिकार देता है।
1: बिल्कुल,
0: यह संपत्ति वसीयत या गिफ्ट डीड के माध्यम से दी जा सकती है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। माता पिता को चाहिए कि स्पष्ट निर्णय ले, परिवार में संवाद बनाए रखे, विवाद की स्थिति से बचने का प्रयास करें ताकि भविष्य में रिश्तों में कड़वाहट न बढ़े।
1: बिल्कुल,
0: और इसी के साथ बच्चों को यह समझना चाहिए कि माता पिता कोई संपत्ति बांटने की मशीन नहीं है।
1: जी हाँ।
0: उनका सम्मान केवल संपत्ति के कारण नहीं होना चाहिए। सच्चे संस्कार यह सिखाते हैं कि माता पिता की सेवा हमारा कर्तव्य है। रिश्ते लालच से बड़े होते हैं। संपत्ति से ज्यादा जरूरी परिवार का सम्मान होता है।
1: जी हाँ।
0: अगर परिवार में केवल अधिकार की बात होगी और जिम्मेदारी नहीं होगी तो रिश्ते कमजोर हो जाएंगे।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी को ये सीखने की आवश्यकता है कि जीवन में मेहनत करके स्वयं कुछ हासिल करना सबसे बड़ी उपलब्धि है। यदि व्यक्ति केवल माता पिता की संपत्ति पर निर्भर रहेगा तो वो आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा।
0: बिल्कुल,
1: स्वाभिमान से जीने वाला व्यक्ति अपनी पहचान खुद बनाता है। इसलिए श्रोता साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि स्व अर्जित संपत्ति पर माता पिता का पूरा अधिकार होता है।
0: बिल्कुल,
1: वे अपनी इच्छा, जरूरत और भावनाओं के अनुसार उसे किसी को भी दे सकते हैं। बच्चों का कर्तव्य है कि वे माता पिता का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनके निर्णय को स्वीकार करें।
0: जी हाँ।
1: संपत्ति से बढ़कर माता पिता का प्यार और आशीर्वाद होता है। यदि परिवार में प्रेम, संस्कार और सम्मान बना रहे तो संपत्ति कभी विवाद का कारण नहीं बनती।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए श्रोता साथियों आपसे कहना चाहेंगे कि माता पिता का हमें मान करना होगा, उनके हर निर्णयों का सम्मान करना होगा, तभी हमें संपत्ति से बढ़कर उनका प्यार मिलेगा और यही जीवन का सच्चा आधार है।
0: बिल्कुल जागृति जी, स्व अर्जित संपत्ति जो है उस पर निर्णय लेने का अधिकार माता पिता का ही होता है। यह केवल कानूनी विषय नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि विश्वास, सम्मान और पारिवारिक मूल्यों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। माता पिता ने जिस संपत्ति को जीवन भर की मेहनत से अर्जित किया है उसके बारे में फैसला लेने का अधिकार भी उन्हें ही होना चाहिए। लेकिन समाज को यह भी समझना होगा कि संपत्ति के कारण रिश्ते टूटना सबसे बड़ी हानि होती है।
1: बिल्कुल,
0: अगर परिवार में संवाद, सम्मान और संवेदनशीलता बनी रहे तो कई विवादों से बचा जा सकता है। बच्चों का कर्तव्य संपत्ति पाना नहीं होना चाहिए बल्कि माता पिता का सम्मान और साथ निभाना भी होना चाहिए।
1: जी हाँ।
0: आखिर में इंसान के साथ जमीन नहीं जाती, लेकिन उसके रिश्ते और व्यवहारों की जो याद है वो जरूर रह जाती है।
1: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि स्व अर्जित संपत्ति केवल धन नहीं होती बल्कि माता पिता के जीवन भर के संघर्ष, त्याग और मेहनत सपनों की कमाई होती है, जैसा कि हमने पहले कहा था।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए उस पर निर्णय लेने का पूरा अधिकार भी उन्हीं का होना चाहिए। संतान का धर्म केवल संपत्ति प्राप्त करना नहीं बल्कि माता पिता को सम्मान, प्रेम और सहारा देना भी है। जिस घर में माता पिता का आदर होता है वहाँ सुख, शांति और समृद्धि स्वयं आ जाती है।
0: बिल्कुल,
1: यदि बच्चे केवल संपत्ति के पीछे भागेंगे तो रिश्तों की मिठास खो जाएगी, लेकिन यदि वे माता पिता के आशीर्वाद और संस्कारों को सबसे बड़ी पूंजी मानेंगे तो जीवन सच में सफल बन जाएगा।
0: बिल्कुल,
1: माता पिता की सबसे बड़ी इच्छा ये नहीं होती कि उनकी संपत्ति कौन देगा, बल्कि ये होती है कि उनकी संतान एक अच्छा इंसान बने।
0: बिल्कुल,
1: हमें समझना होगा कि संपत्ति बांटी जा सकती है लेकिन माता पिता का प्यार, त्याग और ममता कभी बांटी नहीं जा सकती। इसीलिए हर संतान का कर्तव्य है कि वो अपने माता पिता के निर्णय का सम्मान करें और अपने व्यवहार से उनका दिल जीते, क्योंकि अंत में वही संतान सबसे अमीर कहलाती है जिसके पास माता पिता का विश्वास और आशीर्वाद होता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हम ये जान पाए कि स्व अर्जित संपत्ति क्या होती है और किस तरीके से माता पिता ये किसी को भी दे सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ये उनका अपना अधिकार है। आशा करते हैं कि ये सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल,

0: साथियों, इस गीत के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से स्व अर्जित संपत्ति को लेकर, वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपनी

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपनी दोस्त मनीषा पटेल और आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर का स्वीकार कीजिएगा साथियों प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: जी हाँ,
0: और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी बिल्कुल श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ,
1: जैसा कि साथियों हम जब भी कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर हाजिर होते हैं तो बातचीत करते हैं एक नए विषय को लेकर।
0: जी हाँ,
1: और हमारा जो सामुदायिक रेडियो प्रोग्राम है हमारा स्वास्थ्य, वो हमारी स्वास्थ्य जागरूकता विषयों को लेकर जुड़ा ही विशेष कार्यक्रम है मनीषा। और हर बार जब भी हम हाजिर होते हैं तो एक नए विषय को लेकर बातचीत करते हैं।
0: जी,
1: तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नया विषय जुड़ने जा रहा है। साथियों आज हम बात कर रहे हैं मटके के पानी के स्वास्थ्य लाभों को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि हम सभी जानते हैं मनीषा कि गर्मी के मौसम में अधिकतर लोग फ्रिज का पानी पीना पसंद करते हैं या फिर कहें कि ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं। ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं मटके का जो पानी होता है उसका उपयोग कम किया जाता है। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम श्रोता साथियों को यही बताएंगे कि मटके के पानी के स्वास्थ्य लाभ क्या क्या हैं और हमें किस प्रकार से फिर से मटके के पानी के महत्वता को समझना चाहिए।
0: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी।
1: जी हाँ,
0: लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं मटके का पानी क्यों है हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी को लेकर।
1: बिल्कुल,
0: कोशिश हम देखते हैं कि भारत की परंपरा में मटके का पानी केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारी जीवन शैली, स्वास्थ्य, प्रकृति से जुड़ी समझ का एक प्रतीक भी है।
1: बिल्कुल,
0: आज के आधुनिक समय में श्रोता साथियों, जब हर घर में फ्रिज का ठंडा पानी उपलब्ध है, तब भी गाँव, कस्बों और कई शहरों में लोग मटके के पानी को पसंद करते हैं। कशिश
1: जी, बिल्कुल आपने सही कहा।
0: इसका कारण श्रोता साथियों केवल स्वाद ही नहीं, बल्कि उससे मिलने वाले स्वास्थ्य लाभ भी हैं। हमारे पूर्वजों ने बिना वैज्ञानिक उपकरणों के भी यह समझ लिया था कशिश, कि मिट्टी के बर्तन में रखा पानी शरीर के लिए अधिक लाभकारी होता है।
1: जी बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि गर्मियों के दिनों में जब तेज धूप और लू का प्रभाव बढ़ जाता है, तब मटके का पानी शरीर को राहत देने में काम करता है। साथियों, यह न केवल बहुत ठंडा होता है और न ही हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है।
1: बिल्कुल,
0: इसके विपरीत श्रोता साथियों, फ्रिज का अत्यधिक ठंडा पानी कई बार हमारे गले, पाचन और शरीर की प्राकृतिक क्षमताओं पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो ऐसे में आज श्रोता साथियों, जरूरत इस बात की है कि हम अपनी पुरानी परंपरा और घरेलू ज्ञान को फिर से समझें।
0: जी हाँ,
1: और साथ ही उन्हें अपनाएं भी मनीषा, क्योंकि हम देखते हैं कि मटके का पानी केवल स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि पर्यावरण और आर्थिक दृष्टि से भी बहुत ही उपयोगी है।
0: बिल्कुल,
1: तो आज के इस कार्यक्रम में हम इस विषय को लेकर दोस्तों आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, ताकि श्रोता साथियों हम नई पीढ़ी को इस चीज के बारे में बता सके, क्योंकि हम देखते हैं कि मटके का इतिहास काफी पुराना है, साथ ही इसमें भारतीय संस्कृति का महत्व भी है।
0: बिल्कुल,
1: देखते हैं श्रोता साथियों कि भारत में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग हजारों वर्षों से होता आया है। प्राचीन काल में लोग मनीषा मिट्टी के घड़े, सुराही और मटकों में पानी संग्रहित करते थे। गाँव में आज भी हम कई बार देखते हैं कि घर के आंगन में रखा मटका केवल एक बर्तन नहीं होता
0: जी,
1: बल्कि घर की पहचान होती है। ऐसे में दोस्तों, भारतीय संस्कृति में मिट्टी को पवित्र माना जाता है और मिट्टी से बने बर्तन जो हैं वो प्रकृति के करीब होते हैं, जैसा कि आपने बताया था मनीषा।
0: जी हाँ,
1: और देखते हैं कि उनमें पानी रखने से पानी की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। श्रोता साथियों, मटके का पानी अतिथि सत्कार का भी हिस्सा रहा है
0: जी,
1: और देखते हैं कि जब गांव में मेहमान आते हैं तब सबसे पहले उन्हें मटके का ठंडा पानी ही दिया जाता है।
0: जी हाँ,
1: क्योंकि यह केवल परंपरा नहीं बल्कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का प्रतीक भी है।
0: जी बिल्कुल कशिश, यही अगर हम श्रोता साथियों को बताएं कि मटके का पानी प्राकृतिक रूप से ठंडा कैसे होता है। तो साथियों, हम देखते हैं कि मिट्टी में छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं
1: जी,
0: जब मटके में पानी भरा जाता है कशिश, तो इन छिद्रों के माध्यम से बहुत थोड़ी मात्रा में पानी बाहर की सतह तक पहुंचता है। बाहर की गर्म हवा श्रोता साथियों उस पानी को वाष्प में बदल देती है। इस प्रक्रिया से श्रोता साथियों, मटके के अंदर पानी का स्वाभाविक रूप ठंडा रहता है।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही हम देखते हैं कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से प्राकृतिक होती है। इसमें श्रोता साथियों बिजली या किसी मशीन की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही कारण है कि कशिश, मटके का पानी संतुलित ठंडक देने वाला होता है, साथ ही यह हमारे शरीर को राहत देता है, इसके कोई नुकसान नहीं होते।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी बहुत अच्छी चल रही है, ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे
0: जी हाँ,
1: लेकिन अभी क्यों ना हमारे दोस्तों को एक और प्यारा सा गीत यहाँ पर सुनवा दे।
0: जी बिल्कुल कशिश, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ।

0: दोस्तों इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, मटके के पानी पीने से स्वास्थ्य पर होने वाले फायदों को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। अगर आपको बताएं श्रोता साथियों, तो जब हम मटके के पानी का सेवन करते हैं तो इससे हमारी पाचन शक्ति बेहतर होती है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि मनीषा, मटके का पानी पाचन तंत्र के लिए बहुत लाभकारी होता है और बहुत ज्यादा ठंडा पानी भोजन को पचाने की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन दोस्तों जो मटके का पानी है वो भोजन के पाचन में सहायता करता है।
1: जी हाँ,
0: देखते हैं कि जब हम फ्रिज का बर्फ जैसा ठंडा पानी पीते हैं साथियों, तो शरीर को उस पानी का तापमान सामान्य करने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ती है, इससे पाचन क्रिया प्रभावित होती है। लेकिन वहीं मटके का पानी सामान्य ठंडक वाला होने के कारण पेट पर अचानक दबाव नहीं डालता।
1: जी हाँ,
0: इससे श्रोता साथियों गैस, अपच और कब्ज जैसी समस्याओं से भी राहत मिलती है। अगर बात करें गले की, तो श्रोता साथियों गर्मियों में बहुत अधिक ठंडा पानी पीने से गले में खराश, खांसी और संक्रमण की समस्या हो सकती है।
1: जी,
0: खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो ये समस्या बहुत ज्यादा है। अगर बात करें तो मटके का पानी गले को आराम देगा और यह न तो श्रोता साथियों गर्म होता है न ही बहुत ठंडा, इसलिए यह गले के लिए सुरक्षित माना जाता है। मनीषा
1: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि यह हमारे शरीर के तापमान को भी संतुलित रखता है। गर्मी के मौसम में श्रोता साथियों शरीर का तापमान बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे समय में मटके का पानी शरीर को भीतर से ठंडक प्रदान करता है। यह शरीर को संतुलित बनाए रखने में मदद करता है साथियों। साथ ही कशिश, हम देखते हैं कि फ्रिज का अत्यधिक ठंडा पानी अचानक शरीर पर प्रभाव डालता है।
0: बिल्कुल,
1: जबकि मटके का पानी धीरे धीरे शरीर को ठंडक देता है, इससे हमारे शरीर की प्राकृतिक प्रणाली है वो भी सही बनी रहती है।
0: जी हाँ।
1: साथ ही हम देखते हैं कि गर्मियों में श्रोता साथियों लू लगना एक सामान्य समस्या है। अधिक धूप में रहने से श्रोता साथियों शरीर में पानी की कमी हो जाती है और हमें कमजोरी महसूस होने लगती है। श्रोता साथियों मटके का पानी शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है, इससे श्रोता साथियों प्राकृतिक शीतलता मिलती है और साथ ही हमारे लू से भी यह बचाव करता है।
0: बिल्कुल
1: कशिश, हम देखते हैं कि गांव में खेतों में काम करने वाले किसान आज भी मटके का पानी पसंद करते हैं, क्योंकि लंबे समय तक शरीर को ताजगी देता है यह।
0: बिल्कुल आपने सही कहा। इसी के साथ अगर बात करें श्रोता साथियों, तो हम देखते हैं कि मिट्टी में कई तरीके के प्राकृतिक गुण पाए जाते हैं।
1: जी जी,
0: मनुष्य ऐसा माना जाता है कि मिट्टी के बर्तन में रखा पानी हल्के प्राकृतिक खनिजों के संपर्क में आता है।
1: जी हाँ,
0: जिससे श्रोता साथियों पानी का स्वाद और गुणवत्ता बेहतर हो जाती है। कह सकते हैं कि दोस्तों कुछ विशेषज्ञों का भी

0: चिकित्सा कहना है कि मिट्टी पानी की अम्लीयता को संतुलित करने में मदद कर सकती है। इससे शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलती है। साथ ही मटके का जो पानी है उसे पीने से शरीर में ताजगी और ऊर्जा बनी रहती है। साथियों
1: बिल्कुल,
0: ये शरीर को धीरे धीरे ठंडक देता है जिससे थकान कम महसूस होती है। खासकर श्रोता साथियों, गर्मियों में खेतों, फैक्ट्री और बाहर काम करने वाले लोगों के लिए तो मटके का पानी बहुत ज्यादा लाभकारी माना जाता है।
1: जी हाँ।
0: अब यहीं अगर बात करें कि मटके के पानी का सही उपयोग हम कैसे करें मनीषा, तो मटके का पूरा लाभ लेने के लिए कुछ तरीके हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है।
1: जी हाँ।
0: जैसे कि साथियों, नया मटका उपयोग करने से पहले आपको अच्छी तरह साफ कर लेना है। मटके को ठंडी और साफ जगह पर रखना है।
1: जी हाँ।
0: और मटके का जो पानी है उसे आप रोज बदलते रहें। मटके को समय समय पर साफ करना जरूरी होता है और मटके को ढक कर रखें ताकि धूल और कीड़े न जाएं। श्रोता साथियों, साथ ही जो बहुत पुराने और टूटे मटके होते हैं उसका उपयोग हमें नहीं करना है। हम देखते हैं कि अगर हम इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं श्रोता साथियों, तो हम मटके के पानी के ढेर सारे लाभ ले सकते हैं।
1: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को कहना चाहेंगी कि मटके का पानी केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य, परंपरा और प्रकृति का सुंदर मेल है।
0: बिल्कुल,
1: यह श्रोता साथियों शरीर को प्राकृतिक ठंडक देता है, पाचन को बेहतर बनाता है और साथ ही हमारे गले की भी रक्षा करता है।
0: बिल्कुल।
1: और श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि यह हमें गर्मियों में राहत भी प्रदान करता है। इसके साथ ही कशिश, हम देखते हैं कि यह पर्यावरण के अनुकूल और आर्थिक रूप से सस्ता विकल्प भी है। आज के आधुनिक युग में श्रोता साथियों, जहां लोग स्वास्थ्य समस्याओं और पर्यावरण संकट से जूझ रहे हैं, वहां श्रोता साथियों मटके का पानी का महत्व और भी बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल,
1: हमें अपनी पुरानी परंपराओं को समझते हुए उन्हें फिर से अपनाने की आवश्यकता है। साथियों, यदि हम अपने जीवन में मटके के पानी जैसी सरल और प्राकृतिक आदतों को शामिल करते हैं कशिश, तो यह न केवल हमें स्वस्थ रखता है बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी एक बेहतर और संतुलित जीवन शैली दे सकता है।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, कार्यक्रम के अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि प्रकृति के करीब रहने वाला जीवन ही सबसे स्वस्थ और सुखद होता है, और मटके का पानी उसी प्राकृतिक जीवन का एक अमूल्य हिस्सा है।
0: जी हाँ मनीषा, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है।
1: जी हाँ।
0: और अब हम देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: बिल्कुल,
0: विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे श्रोता साथियों को एक और प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ कशिश, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य अब यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: बिल्कुल,
1: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
1: नमस्कार।

0: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी जिंदगी में भी। महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: जागृति बुंद, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
2: नाना अंजलि बुंद हूँ था का?
1: अरे जागृति बुंद, आपड़ी जे नदी है ये हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
2: ओ अंजलि बुंद, इतले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
1: होवे जागृति बुंद, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
2: होवे अंजलि बुंद, आपड़े भाई बुंद थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
1: होवे होवे जागृति बुंद, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो, जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
0: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
1: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
0: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
1: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
1: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
3: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: मिस जमीन हूँ और माटी टकीस जाने जाऊँ हूँ। मैं खेत हमारा बीज बोया मैं फसल उभाई वो विश्रम करो तो पसे बाप दादा ने जमीन माते मारो अधिकार के नती सूरी जन्म टकीस हकदार है कानूने आ बात मानी है ना पढ़ना पूटे एवं हक को ले सके ना रिवाज और सच में बदली सके बाप दादा ने जमीन सूर्य नो अधिकार सूर्य नो हक इन्हें पहचान
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित जागृति बुन आपने कार्य सोचू है अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था नाना अंजलि बुन हूँ था का अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएगा खेतर बंजर थे जाएगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा ओ अंजलि बुन एटले मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बावारी पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनों ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो फॉगर रेडियो 90.8 FM पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम सपनों की उड़ान में जब भी हम हाजिर होते हैं तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे ढेर सारी बातें होती हैं। आज का जो विषय है वो भी कुछ ऐसा ही है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे धीरे चलना गलत नहीं है, रुक कर संभलना कमजोरी नहीं, और हर अंधेरा हमेशा नहीं रहता। जानेंगे आज कार्यक्रम में हमारे जीवन से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में कि जब मन किसी काम में नहीं लगता तो हम क्या करें। ढेर सारी बातें बनी रहेंगी, लेकिन अभी कार्यक्रम के दस्तूर को निभाते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला एक गीत। आप बने रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, इस गीत के बाद एक बार फिर से मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सपनों की उड़ान में, जहाँ हम बात करते हैं जिंदगी से जुड़े उन एहसासों की, जिन्हें हम महसूस तो करते हैं लेकिन अक्सर कह नहीं पाते। जी हाँ दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका मन किसी काम में नहीं लगता? सब कुछ सामने हो, सपने भी हो, जिम्मेदारियां भी हो, लेकिन फिर भी दिल कहे बस अब नहीं। अगर हाँ तो दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस चुप्पी की, उस थकान की जो बाहर से दिखाई नहीं देती। दोस्तों, कई बार जिंदगी में ऐसा दौर आता है जब इंसान बिना वजह चुप रहने लगता है, ना किसी से बात करने का मन करता है, ना ही हंसने का और ना ही कोई काम करने का। सुबह उठते ही लगता है कि फिर वही दिन, फिर वही भागदौड़। और सबसे मुश्किल बात क्या होती है जानते हैं श्रोता साथियों आप? ये होती है कि लोग समझते हैं कि इंसान आलसी हो गया है, जबकि सच ये होता है कि उसका मन अंदर से थक चुका है। क्योंकि हर थका हुआ इंसान आलसी नहीं होता। कई लोग जिम्मेदारियों का वजन उठाते उठाते अंदर से चुप हो जाते हैं। कभी पढ़ाई का दबाव, कभी नौकरी की चिंता, कभी घर की जिम्मेदारियां, कभी दूसरों से तुलना। साथियों, इन सारी चीजों की वजह से इंसान धीरे धीरे खुद को भूलने लगता है। आज का युवा सबसे ज्यादा मुस्कुराता भी है और सबसे ज्यादा अंदर से टूटा हुआ भी होता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर सबकी जिंदगी खूबसूरत दिखाई देती है, लेकिन वहाँ कोई भी बेचैन रातें नहीं दिखाता, कोई अपने डर को नहीं दिखाता, कोई अपने टूटे हुए सपनों की तस्वीर नहीं डालता। क्योंकि किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि कभी कभी हम दूसरों की चमक देखकर अपनी रोशनी को कम समझने लगते हैं, और यहीं से शुरू होती है जिंदगी की असली थकान। क्योंकि मन भी इंसान की तरह थकता है। जब लगातार कोशिश करने के बाद भी साथियों सफलता न मिले, जब अपनों से उम्मीद टूट जाए, जब खुद की मेहनत बेकार लगने लगे, तब मन धीरे धीरे शांत नहीं बल्कि खाली होने लगता है। और यही खालीपन इंसान को हर काम से दूर कर देता है। लेकिन दोस्तों, यह जिंदगी का अंत नहीं होता है, यह सिर्फ एक संकेत है कि अब आपको खुद का ख्याल रखने की जरूरत है। हर समय मजबूत बने रहना जरूरी नहीं है। अगर मन थक गया है तो थोड़ा रुक जाना गलत नहीं है। पेड़ भी सूखे मौसम में कुछ समय शांत खड़े रहते हैं ताकि फिर से हरे हो सके। इसलिए दोस्तों, छोटी छोटी बातें जो मन को फिर से मजबूत बना सकती है, उनके लिए हमें खुद को थोड़ा समय देना होगा। और हमारा भी समय अब हो गया है ना कि हम एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन कर ले, ताकि कार्यक्रम में जो बातें चल रही है उनका मजा लेते हुए थोड़ा सा हमारा भी मन हल्का हो जाए। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप बने रहिएगा आपकी अपनी दोस्त अंजलि पारेश्वर के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको कहा था कि पेड़ भी सूखे मौसम में कुछ समय शांत रहते हैं ताकि वे फिर से हरे हो सके। तो दोस्तों, इसके लिए हमें हमारे जीवन में छोटी शुरुआत करनी होगी। जब मन बिल्कुल काम न करे तब पूरी मंजिल मत सोचिए, बस एक छोटा सा कदम उठाइए। सिर्फ 10 मिनट पढ़िए, सिर्फ एक जरूरी काम कीजिए, धीरे धीरे मन दोबारा चलने लगता है। बड़ी उड़ाने दोस्तों हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है, इसलिए पहला कदम छोटा होना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि हर इंसान की जिंदगी का समय अलग होता है। कोई जल्दी सफल होता है, कोई धीरे होता है, लेकिन देर से खिलने वाला फूल भी उतना ही सुंदर होता है। इसलिए साथियों, अगर किसी और की रफ्तार तेज है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप पीछे हैं, क्योंकि अक्सर हमारे जीवन में यही होता है। अगर हमारे साथ में पढ़ने वाला कोई हमारा मित्र है या कोई हमारे परिवार का सदस्य है, वो अगर जल्दी सफल हो जाता है तो घर परिवार के लोगों से, समाज के लोगों से और हमारे खुद के अंदर भी ये सवाल आने लगता है कई बार कि वो तो इतना सफल हो गया और मैं अभी तक यहाँ पर क्यों हूँ। तो दोस्तों, आपको कहना चाहूंगी कि हर इंसान की क्षमताएं अलग होती हैं और हर इंसान की जिंदगी का समय भी अलग होता है। जब हमारा समय आएगा तब हमें हमारे जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी, उसके लिए हमें प्रयास करते रहना है। ऐसा नहीं है कि समय आएगा तब मिल जाएगा और उसको लेकर हम प्रयास ही न करें। प्रयास करते रहिए, सफलता का समय अवश्य आएगा। और इसी के साथ साथियों, अपने मन की बात कहिए। कभी कभी सिर्फ रो लेने से भी दिल हल्का हो जाता है। अपनी बातें अंदर दबाकर मत रखिए, किसी दोस्त से कहिए, किसी अपने से कहिए या खुद से बात कीजिए, क्योंकि चुप्पी कई बार इंसान को अंदर ही अंदर कमजोर कर देती है। याद रखिए दोस्तों कि आप कोई मशीन नहीं है, कि हर समय खुश रहना जरूरी है। हर दिन अच्छा हो यह भी जरूरी नहीं होता, लेकिन हर मुश्किल दिन के बाद एक नया दिन अवश्य आता है। अगर आज आपका मन थक गया है तो खुद को खत्म मत समझिए। हो सकता है कि आपका दिल सिर्फ थोड़ा आराम मांग रहा हो। तो श्रोता साथियों, कहना चाहूंगी कि सपने देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन सपनों के पीछे भागते भागते खुद को खो देना सही तो नहीं है ना। आपकी कीमत सिर्फ आपकी नौकरी, अच्छे नंबर या सफलता से तय नहीं होती है। आप जरूरी हैं, आपकी मुस्कान जरूरी है और आपका मानसिक संतुलन जरूरी है, क्योंकि किसी ने क्या खूब ही कहा है कि जिंदगी सिर्फ मंजिल पाने का नाम नहीं है, खुद को संभालते हुए आगे बढ़ने का नाम भी है। अगर आपके आसपास कोई भी व्यक्ति चुप रहने लगा है, हर समय उदास दिखता है, किसी काम में मन नहीं लगा पा रहा, तो उसे आलसी कहने से पहले उसका हाल जरूर पूछिएगा दोस्तों। कई बार एक प्यार भरी बातचीत किसी टूटे हुए इंसान को फिर से जीने की वजह दे सकती है। दोस्तों, जिंदगी में ऐसे दिन आना गलत नहीं है कि जब मन किसी काम में न लगे। गलत तब होता है जब इंसान खुद से उम्मीद छोड़ देता है। इसलिए याद रखिए, धीरे चलना हार नहीं है, रुककर संभलना कमजोरी नहीं है और अंधेरा कभी हमेशा नहीं रहता। आपकी जिंदगी अभी बाकी है, आपके सपने अभी जिंदा है और शायद आपकी सबसे खूबसूरत सुबह अभी बाकी है। इसलिए दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि इंसान हमेशा एक जैसा महसूस नहीं कर सकता। कभी मन उत्साह से भर जाता है तो कभी बिना वजह खाली खाली सा लगने लगता है, लेकिन यह खालीपन हमेशा कमजोरी नहीं होता। कई बार यह हमारे मन की आवाज होती है जो हमें धीरे से यह बताना चाहती है कि अब खुद को समझने, थोड़ा रुकने और खुद का ध्यान रखने का समय आ गया है। आज की तेज भागती दुनिया में लोग काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन अपने मन की हालत को समझने का समय खोते जा रहे हैं। हर कोई सफल दिखना चाहता है, मजबूत दिखना चाहता है, लेकिन सच यह है कि हर इंसान के भीतर कोई ना कोई संघर्ष चल रहा होता है। इसलिए जब कभी आपका मन किसी काम में न लगे तो खुद से नाराज होने की वजह खुद के साथ थोड़ा नरम व्यवहार कीजिए। हो सकता है कि जिंदगी आपको रोककर कुछ सिखाना चाहती हो। हो सकता है दोस्तों कि यह समय आपको और मजबूत बनाने आया हो, और हो सकता है कि जिस ठहराव को आप कमजोरी समझ रहे हैं वही आगे चलकर आपकी नई शुरुआत बन जाए। इसलिए याद रखिए कि सूरज पे हर शाम ढलता है, लेकिन
अगली सुबह फिर लौट आता है। ठीक उसी तरह इंसान भी मुश्किल दौर से गुजरकर दोबारा संभल सकता है, इसलिए उम्मीद का हाथ कभी मत छोड़िए, अपने मन को सुनिए, अपने सपनों को थोड़ा समय दीजिए और खुद पर भरोसा बनाए रखिए, क्योंकि जिंदगी उन लोगों के लिए हमेशा रास्ते बनाती है जो थकने के बाद भी चलना बंद नहीं करते। तो साथियों, यह थी हमारे आज के कार्यक्रम की महत्वपूर्ण बातें। आशा करती हूँ कि आपको अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले एक और प्यारे से गीत के साथ में मैं आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी। तो आइए सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे कार्यक्रम सपनों की उड़ान से विदा लेते हैं। आपको कार्यक्रम में होने वाली बातचीत, गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेशर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।
1: ढलान वाली जमीन देखो।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बुंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाए
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदिया है ई हुकी जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नो संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नो जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनों ने कह

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को जाना कि दहेज एक अभिशाप कैसे है और किस तरीके से यह जो अभिशाप है वो सामाजिक कुरीति बनता जा रहा है। श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि प्राचीन समय में दहेज की परंपरा आज जैसी नहीं थी। उस समय माता पिता अपनी बेटी को विवाह के समय कुछ वस्तुएं, गहने और घरेलू सामान प्रेम पूर्वक देते थे ताकि बेटी नए घर में सुखपूर्वक जीवन शुरू कर सके। यह पूरी तरह स्वेच्छा पर आधारित था, लेकिन धीरे धीरे समाज में दिखावा, लालच और ऊंच नीच की भावना बढ़ने लगी। विवाह एक पवित्र संस्कार के बजाय प्रतिष्ठा का विषय बन गया। मनीषा, लड़के की शिक्षा, नौकरी और सामाजिक स्थिति के आधार पर उसकी कीमत तय होने लगी। इसी सोच ने दहेज को एक भयावह सामाजिक समस्या बना दिया। आज स्थिति यह है कि कई परिवार बेटी के जन्म से ही चिंता में डूब जाते हैं। उन्हें बेटी की शिक्षा से अधिक उसकी शादी और दहेज की चिंता सताने लगती है और यह सोच जो है वो समाज के लिए बहुत दुखद है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज कई लोग विवाह को दिखावे का माध्यम बना चुके हैं। बड़े बड़े समारोह, महंगे उपहार और भारी दहेज को लेकर लोग समाज में अपनी प्रतिष्ठा दिखाने चाहते हैं।
0: बिल्कुल,
1: मानसिकता दहेज प्रथा को बढ़ावा देती है। साथ ही हम देखते हैं कि कुछ लोग विवाह को धन कमाने का साधन भी मानते हैं। वे लड़की की नौकरी, शिक्षा के नाम पर एक बड़ी मांग रखते हैं।
0: बिल्कुल,
1: यह लालच दहेज को श्रोता साथियों बड़ा बनाता जा रहा है। साथ ही हम देखते हैं कि समाज में लंबे समय से यह सोच भी रही है कि लड़का परिवार का सहारा होता है।
0: बिल्कुल,
1: लड़की पराया धन होती है, इस कारण लड़के वालों को श्रेष्ठ माना जाता है और दहेज की मांग की जाती है। अंजलि जी, हम देखते हैं कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में आज भी लोग दहेज को गलत नहीं मानते। शिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण लोग इसे कुप्रथा को एक परंपरा समझते हैं।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि कई परिवारों को डर रहता है कि यदि दहेज नहीं देंगे तो बेटी का विवाह अच्छे परिवार में नहीं होगा। यह डर भी दहेज को और बढ़ावा दे रहा है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि एक परिवार दूसरे परिवार की नकल करता है। यदि किसी ने विवाह में अधिक दहेज दिया है तो दूसरे लोग भी वैसा ही करने का प्रयास करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: समाज में दहेज की प्रतिस्पर्धा है वो भी बढ़ती जा रही है।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों को कि दहेज प्रथा का सबसे बड़ा कारण है लालच। कई लोग विवाह को कमाई का साधन बना लेते हैं। वे महंगे वाहन, नगद धन, गहने और संपत्ति की मांग करते हैं और समाज में दिखावा भी इस समस्या को बढ़ाता है। कई परिवार समाज के डर से दहेज देते हैं। उन्हें लगता है कि यदि उन्होंने दहेज नहीं दिया तो लोग उनकी आलोचना करेंगे या बेटी का सम्मान नहीं होगा। जहाँ शिक्षा की कमी होती है मनीषा, वहाँ भी सामाजिक बुराइयाँ अधिक फैलती है। अशिक्षित लोग दहेज के नुकसान को समझ नहीं पाते और इसे परंपरा मानकर अपनाते रहते हैं। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि आज भी समाज के कई हिस्सों में लड़कों को लड़कियों से श्रेष्ठ माना जाता है। इसी कारण लड़के वाले स्वयं को अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं और दहेज की मांग करने लगते हैं। कुछ लोग विवाह के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि दहेज लेकर वे अपने खर्च और अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से दहेज की प्रथा जो है वो बढ़ रही है।
1: जी हाँ जी जी, ये तो आपने हमारे श्रोता साथियों को बताया कि दहेज प्रथा के क्या कारण हो सकते हैं। अगर हम श्रोता साथियों को बताएं कि दहेज प्रथा है, इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो श्रोता साथियों सबसे बड़ा दुष्परिणाम है वो भी आर्थिक बोझ। दहेज प्रथा का सबसे बड़ा प्रभाव गरीबी और मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ता है।
0: बिल्कुल,
1: कई माता पिता बेटे के विवाह के लिए वर्षों तक पैसा जोड़ते हैं। अंजलि, कुछ लोग कर्ज ले लेते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी कमाने में निकाल देते हैं।
0: जी जी,
1: श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि दहेज के कारण कई परिवार होते हैं जो बेटियों को बहुत समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि बेटी के विवाह में बहुत खर्च होगा।
0: बिल्कुल,
1: सोच समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव को पैदा करती है। साथ ही हम देखते हैं कि दहेज प्रथा का एक भयानक परिणाम कन्या भ्रूण हत्या भी है।
0: बिल्कुल,
1: कुछ लोग बेटी के जन्म से पहले ही उसका भ्रूण हत्या कर देते हैं ताकि भविष्य में दहेज का बोझ न उठाना पड़े।
0: बिल्कुल मनीषा,
1: के लिए श्रोता साथियों अत्यधिक शर्मनाक बात है। हम देखते हैं कि कई महिलाएं विवाह के बाद दहेज की अतिरिक्त मांग है वो उसको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अत्याचार में डाल देती है।
0: बिल्कुल,
1: उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, कई बार घर से भी निकाल दिया जाता है।
0: बिल्कुल,
1: समाज में ऐसी अनेक घटनाएं सामने आती है जब दहेज न मिलने पर महिलाओं की हत्या कर दी जाती है। यह स्थिति समाज की कुरूप मानसिकता को दर्शाती है।
0: बिल्कुल मनीषा,
1: देखते हैं कि दहेज के अत्याचार से परेशान होकर कई हमारी महिलाएं वे आत्महत्या जैसे कदम भी उठा लेती है। यह स्थिति श्रोता साथियों अत्यंत दुखद और चिंताजनक है।
0: बिल्कुल मनीषा, हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि दहेज लेने और देने की प्रथा महिलाओं को वस्तु की तरह प्रस्तुत करती है। इससे महिलाओं के सम्मान और आत्मविश्वास को गहरी चोट पहुंचती है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि दहेज केवल आर्थिक समस्या नहीं है, यह महिलाओं के जीवन और मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। कई लड़कियां बचपन से ही यह सुनते हुए बड़ी होती है कि उनकी शादी के लिए बहुत धन चाहिए। इससे उनके मन में हीन भावना पैदा हो जाती है। शादी के बाद यदि दहेज कम दिया जाता है तो कई महिलाओं को ताने सुनने पड़ते हैं, उन्हें परिवार में सम्मान नहीं मिलता। कुछ महिलाएं अत्याचार सहते सहते मानसिक तनाव और अवसाद का शिकार हो जाती हैं। दहेज प्रथा महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता के रास्ते में बड़ी बाधा है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से बातें चली रही हैं, ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुना दें।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी

0: दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। श्रोता साथियों, हम बातें कर रही थी दहेज प्रथा को लेकर। अंजलि जी, हम देखते हैं कि दहेज प्रथा का सबसे अधिक प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है। विवाह के बाद यदि दहेज कम मिलता है तो महिलाओं को ताने दिए जाते हैं,
1: बिल्कुल
0: मानित किया जाता है। और कई बार हम देखते हैं कि उसे परिवार में उसका सम्मान भी नहीं किया जाता।
1: जी जी,
0: कुछ महिलाओं को मानसिक रूप से इतना परेशान किया जाता है कि उनका आत्मविश्वास से वो टूट जाता है। सपनों और अपनी इच्छाओं को दबाकर केवल अत्याचार सहने के लिए मजबूर हो जाती है।
1: बिल्कुल।
0: श्रोता साथियों, दहेज प्रथा महिलाओं की स्वतंत्रता सम्मान के खिलाफ है। यह उन्हें सम्मान अधिकारों से वंचित करता है। एक शिक्षित और आत्मनिर्भर महिला भी कई बार, अंजलि जी, हम देखते हैं कि दहेज जैसी समस्याओं का शिकार हो जाती है।
1: बिल्कुल मनीषा, हम देखते हैं कि दहेज केवल आर्थिक समस्या नहीं है, यह महिलाओं के जीवन और मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। कई लड़कियां बचपन से ही यह सुनते हुए बड़ी होती हैं कि उनकी जो शादी है उसके लिए बहुत धन चाहिए, जैसा कि हम कार्यक्रम से पहले जान पाए थे। श्रोता साथियों, दहेज प्रथा केवल एक परिवार को नहीं पूरे समाज को प्रभावित करती है। इससे समाज में असमानता, लालच बढ़ता है। विवाह जैसे पवित्र संबंध जो है वो व्यापार बन जाते हैं। कई गरीब परिवार अपनी बेटियों की शादी देर से करते हैं क्योंकि वे दहेज जुटा नहीं पाते। इससे हम देखते हैं कि सामाजिक समस्या बढ़ जाती है। समाज में बेटियों को बोझ समझने की सोच भी मजबूत होती है। यदि समाज को स्वस्थ और समान बनाना है तो दहेज जैसी बुराइयों को समाप्त करना होगा। भारत सरकार ने दहेज प्रथा को रोकने के लिए कई कानून बनाए हैं। दहेज अधिनियम 1961 की बात करें तो इस कानून के अनुसार दहेज लेना और देना दोनों अपराध हैं। दोषी पाए जाने पर सजा और जुर्माना का प्रावधान है। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा के लिए घरेलू हिंसा कानून, अन्य कानून प्रावधान भी बनाए गए हैं। लेकिन केवल कानून बना देना काफी नहीं होता है श्रोता साथियों। जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी तब तक इस समस्या को पूर्ण रूप से समाधान जो है वो संभव नहीं हो पाएगा।
0: जी हाँ जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि युवाओं की भी जिम्मेदारी इसमें बहुत महत्वपूर्ण होती है।
1: बिल्कुल,
0: आज के युवा समाज को बदलने की सबसे बड़ी शक्ति है। यदि युवा दहेज लेने से इनकार कर दे तो युवा प्रथा वो काफी हद तक समाप्त हो सकती है।
1: बिल्कुल,
0: लड़कों को यह समझना चाहिए कि उसका सम्मान दहेज से नहीं बल्कि उसके चरित्र और कर्मों से होता है।
1: बिल्कुल,
0: लड़कियों को भी आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए ताकि वे किसी भी प्रकार के दबाव में न आए। साथियों, कॉलेज, विद्यालयों, सामाजिक संस्थाओं और दहेज विरोधी अभियान भी हमें चलाने चाहिए।
1: जी जी,
0: युवाओं को सम्मान और जागरूकता फैलानी चाहिए। साथी अंजलि जी, हम देखते हैं कि मीडिया और समाज की भी भूमिका इसमें महत्वपूर्ण होती है।
1: बिल्कुल,
0: टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, सोशल मीडिया समाज को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दहेज विरोधी कार्यक्रम, नाटक, गीत, अभियान लोगों की सोच बदलने में भी मदद करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: सामाजिक संगठनों के माध्यम से भी श्रोता साथियों, हम आगे चलकर लोगों को जागरूक कर सकते हैं। और गांव और शहरों में भी यह अभियान चलाकर हम काफी हद तक दहेज प्रथा के दुष्परिणामों को रोक सकते हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों को कि शिक्षा समाज की सबसे बड़ी ताकत है। लोगों को दहेज के नुकसान के बारे में जागरूक करना जरूरी है। जब बेटियां शिक्षित और आत्मनिर्भर बनेगी तब समाज की सोच बदलेगी। महिलाओं को सम्मान और समान अवसर मिलने चाहिए। विवाह में अनावश्यक खर्च, दिखावे को कम करना चाहिए। सरल और सादगीपूर्ण विवाह समाज के लिए अच्छा उदाहरण बन सकते हैं। गाँवों, स्कूलों, कॉलेज और सामुदायिक कार्यक्रमों में दहेज विरोधी अभियान भी चलाने चाहिए। श्रोता साथियों, आज के युवाओं को दहेज लेने से साफ इनकार करना चाहिए। यदि लड़के स्वयं दहेज का विरोध करने लगेंगे तो ये समस्या तेजी से खत्म हो सकती है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से कि आज समाज में कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने बिना दहेज के विवाह करके अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। कुछ युवाओं ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि वे दहेज जो है वो नहीं लेंगे। ऐसे कदम जो है वो समाज को नई दिशा देते हैं। कई सामाजिक संगठन और महिला समूह भी दहेज के खिलाफ जागरूकता अभियान चला रही है। श्रोता साथियों, इन प्रयासों से धीरे धीरे समाज में सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहे हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ हम देखते हैं कि एक विकसित और सभ्य समाज वही होता है जब महिलाओं को सम्मान और समान अधिकार मिलते हैं।
1: बिल्कुल,
0: समाज की प्रगति ही उसमें बाधाएं बन सकती है। यदि हमें एक मजबूत और खुशहाल भारत बनाना है श्रोता साथियों, तो हमें दहेज जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करना होगा। बेटियों को बोझ नहीं बल्कि शक्ति समझना होगा।
1: जी हाँ,
0: युवाओं को व्यापार नहीं बल्कि प्रेम और विश्वास का संबंध मानना होगा। साथ ही अंजलि जी, कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि दहेज प्रथा भारतीय समाज पर लगा एक सबसे बड़ा कलंक है।
1: बिल्कुल,
0: इसके अनेक इसके कारण अनेक परिवारों की खुशियाँ हैं वो छीन जाती हैं और महिलाओं के जीवन में दुख और अत्याचार बढ़ जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: यह श्रोता साथियों केवल आर्थिक समस्या ही नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक और मानवीय भी समस्या है।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि दहेज जैसी कुप्रथा को समाप्त करने के लिए समाज, सरकार, युवाओं और परिवारों को सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। शिक्षा, जागरूकता, सही सोच के माध्यम से इस अभिशाप को हम श्रोता साथियों काफी हद तक कम कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम ना दहेज लेंगे और ना ही देंगे, तभी समाज में सच्ची समानता, सम्मान और खुशहाली स्थापित हो सकेगी।
1: बिल्कुल मनीषा, हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों को कि दहेज प्रथा समाज के माथे पर लगा एक ऐसा कलंक है जिसने न जाने कितने परिवारों की खुशियां छीन ली है। यह केवल आर्थिक समस्या नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि मानवता, समानता और सम्मान पर चोट करने वाली सामाजिक बुराई है। जिस समाज में बेटी को लक्ष्मी और शक्ति का रूप माना जाता है, उसी समाज में यदि बेटियों का जो मूल्य है वो दहेज से तय होने लगे तो यह अत्यंत दुख की स्थिति है। हमें यह समझना होगा कि विवाह कोई सौदा नहीं है, रिश्तों की नींव प्रेम, विश्वास और सम्मान पर टिकती है, धन और सम्मान पर नहीं। दहेज से खरीदा गया रिश्ता कभी सच्चा सुख नहीं दे सकता श्रोता साथियों। समाज का हर व्यक्ति, जैसे कि माता पिता, शिक्षक, युवा, महिलाएं और सामाजिक संगठन, यदि मिलकर दहेज का विरोध करे तो यह बुराई समाप्त हो सकती है। हमें ऐसी सोच विकसित करनी होगी जहां बेटी बोझ नहीं बल्कि परिवार और समाज की शक्ति मानी जाए। जब लोग दहेज देने से इनकार करेंगे, जब माता पिता बेटियों को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाएंगे, जब विवाह सादगी और समानता के साथ होगा, तभी समाज वास्तव में प्रगतिशील कहलाएगा। दहेज मुक्त समाज ही श्रोता साथियों एक सुरक्षित, सम्मानपूर्ण और खुशहाल समाज की पहचान बनेगा।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारी श्रोता साथियों से बातें चली रही हैं और ये बातें रह गई हैं वो कुछ छोटी मोटी हम आगे भी करेंगे, लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही श्रोता साथियों बात करना चाहेंगे कि दहेज प्रथा केवल एक सामाजिक कुरीति नहीं है, बल्कि इंसानियत के मूल्यों पर लगा गहरा आघात है। यह वह जहर है मनीषा, जो धीरे धीरे रिश्तों की मिठास, परिवारों की खुशियां और बेटियों के सम्मान को खत्म कर देता है। जिस विवाह को जीवन का सबसे पवित्र संस्कार माना जाता है, वही जब पैसों और सम्मान की मांगों में बदल जाता है, तब रिश्तों की आत्मा कहीं खो जाती है। श्रोता साथियों, आज आवश्यकता केवल कानून बनाने की नहीं है, बल्कि लोगों की सोच बदलने की है। जब तक समाज में लड़का और लड़की बराबर नहीं माने जाएंगे, तब तक दहेज जैसी बुराइयां किसी न किसी रूप में जीवित रहेंगी। हमें अपने परिवारों से ही बदलाव की शुरुआत करनी होगी। बेटियों को बोझ नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और शक्ति का प्रतीक समझना होगा।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसके साथ हम देखते हैं कि दहेज प्रथा के कारण कई परिवार होते हैं वो अपनी बेटियों को शिक्षा, बेटियों की शिक्षा के महत्व को नहीं दे पाते। वे सोचते हैं कि अधिक पढ़ाई करने से अंत में तो दहेज देना पड़ेगा।
0: बिल्कुल,
1: कुछ गरीब परिवारों में लड़कियों की पढ़ाई जल्दी छुड़वा दी जाती है ताकि विवाह के लिए पैसा बचाया जा सके।
0: जी हाँ,
1: इससे लड़कियाँ आत्मनिर्भर नहीं बन सकती है, नहीं बन पाती है। साथ ही यदि वही पैसा शिक्षा, कौशल विकास पर लगाया जाए अंजलि जी, तो बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं और समाज में प्रगति का योगदान दे सकती हैं।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही हम देखते हैं कि दहेज प्रथा समाज में असमानता पैदा करती है। अमीर परिवार बड़ी आसानी से दहेज दे देते हैं, जबकि गरीब परिवार संघर्ष करते हैं।
0: जी हाँ,
1: इससे विवाह जैसी पवित्र व्यवस्था में भी आर्थिक भेदभाव दिखाई देता है। कई बार योग्य और संस्कारी लड़की के रिश्ते के लिए केवल रिश्ते की वशता साथियों इसीलिए टूट जाते हैं क्योंकि उसका परिवार अधिक दहेज देने के लिए सक्षम नहीं होता है।
0: बिल्कुल मनीषा,
1: दूसरी ओर हम देखते हैं कि कुछ लोग केवल धन देखकर ही रिश्ते स्वीकार कर लेते हैं। इसी प्रकार दहेज ही वो मानवीय गुणों की बजाय पैसों के महत्व की प्रवृत्ति को बढ़ाता जा रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। हर माता पिता का सपना होता है कि उनकी बेटी खुशहाल जीवन जिए, लेकिन दहेज की चिंता कई परिवारों की रातों की नींद छीन लेती है। कई गरीब परिवार अपनी जरूरतें छोड़कर केवल बेटी की शादी के लिए धन जुटाने में लग जाते हैं। श्रोता साथियों, ये स्थिति किसी भी सभ्य समाज के लिए उचित नहीं कही जा सकती। समाज को ये समझना होगा कि किसी व्यक्ति की कीमत उसके चरित्र, शिक्षा और संस्कार से होती है, न कि दहेज से। जो रिश्ता सम्मान और समझदारी पर टिका हो, वही जीवन पर सुख देता है। दहेज के आधार पर मनीषा बने जो रिश्ते होते हैं, वो अक्सर अपनापन कम और स्वार्थ अधिक दिखाई देता है उनमें। आज युवाओं के पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि यदि पीढ़ी ठान ले, नई पीढ़ी जो है वो, कि दहेज न तो लेंगे और न ही देंगे, और आने वाले समय में यह समस्या बहुत हद तक समाप्त हो सकती है। बदलाव हमेशा एक छोटे से कदम से शुरू होता है। एक परिवार का साहस दूसरे परिवार के लिए प्रेरणा बन सकता है। हमें ऐसा समाज बनाना होगा जहाँ बेटी को जन्म पर चिंता नहीं, गर्व महसूस हो, जहाँ विवाह सादगी, प्रेम और समानता का उत्सव बने, न कि आर्थिक बोझ। जब समाज की सोच बदलेगी मनीषा, तभी दहेज जैसी कुरीतियों का अंत होगा और हर बेटी सम्मान और सुरक्षा के साथ अपना जीवन जी सकेगी।
1: जी हाँ अंजलि जी, इसके साथ हम श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि हर महिला सम्मान और समान अधिकार की हकदार होती है, लेकिन दहेज प्रथा महिलाओं को वस्तु की तरह प्रस्तुत करती है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसा लगता है जैसे विवाह के लिए लड़की के साथ धन देना अनिवार्य हो गया है। अंजलि जी, हम देखते हैं कि जब किसी लड़की का मूल्य दहेज से जोड़ा जाता है, तो उसकी प्रतिभा, शिक्षा, व्यक्तित्व को महत्व को कम कर दिया जाता है।
0: जी जी,
1: महिलाओं की गरिमाओं के खिलाफ होता है। साथियों, साथ ही हम देखते हैं कि समाज को ये समझना होगा कि बेटी को बोझ नहीं, बल्कि परिवार और राष्ट्र की शक्ति माने।
0: बिल्कुल,
1: देखते हैं कि दहेज की वजह से कई परिवारों में रिश्ते खराब हो जाते हैं। जहाँ प्रेम और सम्मान होना चाहिए, वहाँ विवाद और तनाव पैदा हो जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: कभी कभी छोटी छोटी मांगों को लेकर श्रोता साथियों दोनों परिवारों के बीच कटुता भी बढ़ जाती है। इससे विवाह का वातावरण और परिवार का वातावरण ये वो भी प्रभावित होता है।
0: जी हाँ,
1: जो रिश्ता श्रोता साथियों विवाह विश्वास और सहयोग से शुरू होता है, वो लालच और असंतोष पर आकर टिक जाता है। देखते हैं कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं।
0: बिल्कुल,
1: वे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वैज्ञानिक, अधिकार और उद्यमी बन रही हैं। इसके बावजूद दहेज जैसी सोच बने रहना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।
0: बिल्कुल,
1: समाज महिला सशक्तिकरण की बात करता है, दूसरी ओर हम देखते हैं कि विवाह में दहेज मांगने की भी बात करता है।
0: बिल्कुल,
1: मानसिक नैतिकता समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है साथियों।
0: जी हाँ मनीषा, हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि दहेज प्रथा ने समाज को भीतर से कमजोर कर दिया है। यह केवल पैसों का लेन देन नहीं बल्कि इंसान की संवेदनाओं का अपमान है। जब किसी बेटी के गुण, शिक्षा, संस्कार और मेहनत से ज्यादा महत्व दहेज को दिया जाने लगे, तब यह समझ लेना चाहिए कि समाज सही दिशा से भटक रहा है। एक बेटी अपने माता पिता के घर से सपने लेकर विदा होती है। वह नए परिवार में सम्मान, अपनापन और प्रेम की उम्मीद करती है, लेकिन जब उसके स्वागत से पहले दहेज की सूची तैयार होने लगे, तब रिश्तों की पवित्रता समाप्त तो होने लगती है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से कि दहेज की आग केवल बहुओं को नहीं जलाती बल्कि दोनों परिवारों की शांति और विश्वास को भी खत्म कर देती है। आज भी कई माता पिता अपनी बेटियों की शादी के लिए वर्षों तक मेहनत करते हैं, कर्ज लेते हैं, अपनी छोटी छोटी खुशियों का त्याग कर देते हैं। कुछ परिवार तो केवल दहेज के डर से बेटियों की पढ़ाई तक रोक देते हैं। श्रोता साथियों ये स्थिति बताती है कि दहेज प्रथा ने समाज की सोच को कितना प्रभावित किया है। वास्तव में एक शिक्षित और संस्कारी बेटी किसी भी दहेज से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। वह अपने परिवार, समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। इसलिए श्रोता साथियों जरूरत इस बात की है कि बेटी को बोझ नहीं बल्कि अवसर और सम्मान दिया जाए ताकि वो भी अपना जीवन सही तरीके से जी सके। दहेज को खत्म करने के लिए केवल भाषण देना काफी नहीं है, अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। सादगीपूर्ण विवाह, समान सोच और महिलाओं के प्रति सम्मान ही इस समस्या का सही समाधान हो सकता है।
1: जी हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो चुकी है और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल
1: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पता हम बता लें।
0: बिल्कुल, तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdara.org।
0: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेषर
1: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को।
0: नमस्कार
1: साथी दोस्तों, आप सभी को छोड़े चलते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।

उनके होस्ट कशिश पाराशर। स्वागत करती हूँ दोस्तों आप सभी का हमारे आज के इस कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश का सिलसिला हमारा आपके साथ बना रहता है सोमवार से शनिवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। और इसी बीच दोस्तों आप अपनी फरमाइश गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 9460051234। तो जैसा कि आज भी ये सिलसिला शुरू हो चुका है साथियों सुबह 11 बजे से और ढेर सारी फरमाइशें कार्यक्रम के माध्यम से आ चुकी हैं। बढ़ना चाहूँगे पहली फरमाइश की ओर। साथियों पहली फरमाइश हमारे बीच आई है पंडपुर शहर से। फिल्म का नाम है मोहब्बतें, गीत के बोल है चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं। फरमाइश करता जुड़ रहे हैं जाकिर मुलानी, सबिया, सलमा, मुमताज, दिलसाद, नसीर भी, बानो भी, बादशाह मुलानी और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं। आपको बताना चाहूंगी दोस्तों जुड़ना चाह रहे हैं बागपत से हैं आसिफ अली खान, ममीना नास, मुस्कान, सादिक अली खान, सारिक अली खान। पंडपुर शहर से हैं सुनीता शिंदे, रिशा शिंदे, प्रशांत शिंदे, कृष्णा घोड़के जी। और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं तिलोक चंद्र वर्मा, बागवत वर्मा, सीमा वर्मा, समर राज, आर्यन, आरोही, ऐशिका, श्वेता वर्मा जी खरगोन मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं। तो आइए श्रोता साथियों मनोरंजन कर लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

दोस्तों इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। जैसा कि दोस्तों फरमाइशों का सिलसिला कार्यक्रम के माध्यम से शुरू हो चुका है, तो फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूँगी। फिल्म का नाम है आदमी खिलौना है, गीत के बोल हैं बहुत जताते हो चाह हमसे। इस गीत को आवाज़ दिए अलका याग्निक जी और मोहम्मद अजीज़ जी ने। फरमाइश करता है इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं नवाशहर से सुरेंद्र सांधू, अनिता सांधू, रोहित सांधू, रितेश सांधू, शिक्षा सांधू, प्रतीक्षा सांधू और मिक्स जी। इसी बीच हमारे और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं इसी गीत के साथ में। कश्मीर से हैं फैजरा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन, क्वासिरुद्दीन। मजनू का टिल्ला से हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमा मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक। जुड़ना चाह रहे हैं बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनीश देवी, अर्जुन जी, अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधनुतन और भुवनेश्वरी देवी जी। दिल्ली से रामनाथ प्रजापति, सुमन देवी जी। इसी बीच हमारे और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। कोका बिलाई से हैं उत्तम सिंह चंगेल, मुरर चंगेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष चंगेल, नंदिनी चंगेल। सुगरी कला से अमित शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य चंगेल, अंजलि चंगेल। और भी साथी हैं जो जोड़ रहे हैं। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हैं उदयन पाल, जहीन पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल जी और समस्त परिवार सदस्यगण। तो आइए दोस्तों मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं बहुत जताते हो चाह हमसे। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है हरियाणा से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों। आपको बताना चाहूंगी बेवफा गीत के बोल है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक दिल रुबा है। इस गीत को आवाज दी उदित नारायण जी ने और फरमाइश करता जुड़ रहे हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, कमरजीत कौर, नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन जी शाह, राजनीश शाह, सुषमा कपूर जी। इसी बीच हमारे और भी दोस्त खंडवा से जुड़ रहे हैं, शिवाजी नगर से राजेश सेन, सुरेखा सेन, बागपत से हैं अब्दुल सत्तार अब्बासी जी, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से हैं महाराज कीर्तनपुरी पुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेश पुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी, दिशा गोस्वामी जी। इसी बीच हमारे साथी जुड़ रहे हैं बिरशहर महाराष्ट्र से विकास बंसोड़े, रेखा बंसोड़े, अदिति बंसोड़े, विभव शिंदे, खंडाला से आकाश सरोदे, प्रिया सरोदे जी। छत्तीसगढ़ से हैं बलकर्ण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति प्रहलाद वर्मा, कुपचंद्र वर्मा, मुरली जी, विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मुणत, चेतन नाटा, दिलीप सिंह पंवार जी, दीक्षा कुश मुणत जी, बोरखड़ा पित्रामल से हैं ये। तो आइए दोस्तों, मनोरंजन कर लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश श्रोता साथियों आई है तिलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है शरगिद, गीत के बोल हैं दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं गुणवंत शिवास, करुणा शिवास, आयुष शिवास, विवेक शिवास, बेबी आशीष शिवास छत्तीसगढ़ से, मोहन सिंह राज, अनित राज, सुमित सोमू, मानस राज गिरडीह झारखंड से हैं, मोहम्मद यासिन अंजान, सामन नवाज, असन नवाज, बाबू ऐत, मेफरा नवाज, बेबी चाहत और भी दोस्त। बक्सर बिहार से सफुद्दीन अंसारी, खातून अंसारी, सुरेश रमेश शाहू जी। डुमराऊ बिहार से डब्ल्यू अंसारी, सोना मदीबा, दानिश अंसारी जी। बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य, परमानंद आर्य। बक्सर से और भी श्रोता साथी जुड़ रहे हैं ऐसी राज अंसारी, आसमा खातून अंसारी जी जुड़ना चाह रहे हैं। और भी दोस्त हमारे आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हैं ताजमोहन अंसारी, गुलाम शाबिराही, महराज जहां। बुलंदशहर से हैं श्रोता साथी मोहम्मद सदवासी, निगत प्रवीण अबासी, शहनवाज अबासी, सरफराज फरदीन, सुहान अरजान, अब्बान अबासी और अबासी परिवार के सभी सदस्यगण। बाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेसर साहू, कर्ण राहुल साहू, चंपा साहू। अमरावती से सिद्धार्थ गुणाने, अर्चनाताई गुणाने, हीरामन शेंडे, प्रेम प्रसिद्धि, प्रतिभा गुणाने जी। और भी श्रोता साथी जोड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ से हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा दुष्यंत, प्रांजल समीक्षा, बीबी आराध्या साहू। नरवेल महाराष्ट्र से हैं पीएस नवाडकर, निर्मल नवाडकर, विशाल नवाकर। मलकापुर से नारायण इंग्ले, सोपान ताइडे, आशीष मोहेरकर जी। पटावाला छत्तीसगढ़ से हीरा मणिवर्मा, पारस मणिवर्मा, पुष्पेंद्र मणिवर्मा, नोखीलाल वर्मा जी। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे। तब तक आप बने रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आई है, मैं आपको बताना चाहूंगी। फिल्म का नाम है बादल, गीत के बोल हैं जुगनी जुगनी। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शिवन्या गोस्वामी और अन्नू जी। इसी बीच साथी और भी रायगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं, शिव कुमार जी, संक्रांति चौहान जी, उत्कर्ष चौहान, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल किरण, कपिल कुणाल मेहरा। भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छिमा, कपिल छिपा, पूजा परिहार। इसी बीच और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं, कासगंज से हैं जायद अली सैफी, आबाद खान, जुहान सैफी, लिब्बा मलिक जी। पटेल नगर मौलत से हैं रमेश कुमार जाजोरिया, गीतनी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू जी। गंजुडवारा गणेशपुर से जुड़ना चाह रहे हैं फिरासत हुसैन, अलक कुमार जहां, मोहम्मद अल्फीज, नाहिरा गुड़िया, आफरीन जुबिया जी। तो आइए साथियों, मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं जुगनी जुगनी। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत है दोस्तों, दिल ने ये कहा है दिल से। फिल्म का नाम है धड़कन। श्रोता साथियों की फरमाइश आई है श्रीरामपुर महाराष्ट्र से और फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं नासिर शेख, नाजा नासिर, साजिद शाहिद, गोविंदपुर अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबिया मिखाइल, जैनब मुजावर जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं, नेहरू चौक पैठन से सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव। जलाना शहर से हैं सोमनाथ जाधव, गीता ओम, सुभाष चंदन, एकनाथ, संगीता जाधव। बीर शहर महाराष्ट्र से हैं नंदकिशोर गटे, संगीता गटे, साक्षी गटे, रहस्य मेहत्रा, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय डहोल, पीपी खुलते जी। सिरसा हरियाणा से जुड़ना चाह रहे राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक सचिन, रोहित शर्मा। और भी श्रोता साथी हरियाणा से हैं बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया। जफराबाद से हैं सुधाकर राजे यादव, प्रशांत राजे यादव, संचित वयाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वत सानवी, कल्पना देशमुख। बिहार कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से हैं राहुल, रचिता खुराना जी। सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, रोजी डिकेस्टो, पल डिकेस्टो, विलिस डिकेस्टो जी। रोहतक से जुड़ना चाह रहे हैं एकता कॉलोनी से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट। पथरोड से विजय अंबाड़कर, सुनीता, अक्षय, राधिका, ऋषिकेश अंबाड़कर। और भी साथी हमारे बीच मलकापुर से ही जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वकील वाल्मीकि धाड़े, निनादी धाड़े, सपिल धाड़े, अजय खिरोड़कर। तो आइए साथियों मनोरंजन कर लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं दिल ने ये कहा है दिल से। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की गीत की और अगली फरमाइश का गीत है दुर्गा कॉलोनी हांसे से। फिल्म का नाम है कामचोर। गीत के बोल हैं तुत्संग प्रीत लगाई सजना। इस गीत को आवाज़ दी है किशोर कुमार जी और लता मंगेशकर जी ने। फरमाइश करता है इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे दुर्गा कॉलोनी हांसे से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू जी। इसी बीच हमारे साथी जुड़ रहे हैं जोधपुर राजस्थान से भी जो इसी गीत को सुनना चाह रहे हैं, रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बीबी गर्वी जी। और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं, आपको बताना चाहूंगी नजीमाबाद से हैं राधिका जाटव, प्रभा रानी जटोलिया। दिल्ली से मनमोहन जी मीठी और डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, राज अंसारी, फातमा नाज अंसारी जी। और भी श्रोता साथी गंजूडवारा से शमशुल कमर राही, शाइन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनुसारी, कलीम अंसारी जी। भवानी नगर पैठन से अरुण धोंगड़े, आरती धोंगड़े, भाऊ साहेब धोंगड़े, गंगा सागर धोंगड़े, हर्षवर्धन, अशोक धोंगड़े और कार्तिक परी धोंगड़े परिवार के सभी सदस्यगण भी जुड़ रहे हैं। इसी बीच सुनना चाह रहे हैं इसी गीत को छत्तीसगढ़ से भी श्रोता साथी हैं, मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू। इसी बीच हमारे और भी दोस्त इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं, जवाहरनगर दुर्ग से हैं आरसी कांबड़े, करुणा बीना, अश्विनी बोल कांबड़े, बाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, दिनेश तिवारी, अंकिता जोशी, वेदही जोशी जी। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से जुड़ना चाह रहे रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजुनू, रजना, प्रियल, दिव्यांशी विश्वकर्मा। तो आइए साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं तुत्संग प्रीत लगाई सजना। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों, जैसा कि कार्यक्रम का सिलसिला बना हुआ था सुबह 11 बजे से, जिसे आप सुन पा रहे थे प्रस्तुतकर्ता कशिश पाराशर के साथ में, अब आप इसे सुन पाएंगे मेरे साथ में, यानी कि आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में। साथियों, इस सिलसिले को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है कोरावली से। फिल्म का नाम है आशिकी। गीत के बोल हैं, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। इस गीत की फरमाइश करते हैं साईद हुसैन अंसारी, नरसिंह अंसारी, नोरीन अंसारी, आसना अंसारी और मोहम्मद फेक अंसारी। इसी बीच जुनाचार्य खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, निट्टू लक्ष्मण मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापाजी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से जुनाचार्य हैं पीयूष सिक्का, कुनिका सिक्का, डुग्गू सिक्का और भाविका जी सिक्का। कुंभार गली कोलगांव से जुड़ रही है पांडुर चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन,

आइए दोस्तों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है श्रीरामपुर से। फिल्म का नाम है सिर्फ तुम, गीत के बोल ही एक मुलाकात जरूरी है सनम। इस गीत की फरमाइश करते हैं डी अशोक कुम्भार, अविका जीविका, सोनू कुम्भार, अर्चना कुम्भार। पुनावली से जुड़ना चाह रहे हैं अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने, शाइशा जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं पटिया कला दुर्ग से संजय, शशांक जी, सीमा शाहू, सुजीता जी शाहू। धनोरी तेलीवाला से जुड़ रही हैं निसार सलमानी, नौसाद सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू। इस गीत के अनुरोध करता है मुरादाबाद से अजित कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य जी कसाना। जाकोत राजस्थान से जुड़ना चाह रही हैं शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा जी खटक। आइए दोस्तों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही एक मुलाकात जरूरी है सनम। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाघ रेडियो 90.8 FM।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है जाने दुश्मन, गीत के बोल ही तेरे हाथों में पहना के चूड़िया। इस गीत की फरमाइश करता है कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ जी मरावी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। मलियाना सरधाना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जी जैन। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं मॉडल ट्यून कर्नल से सुधीर न्यूटन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा जी शर्मा, स्प्रेश शर्मा, सोनिया जी शर्मा। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ रही है सिंधी बुजुर्ग से किशोर वडतकर, शुभम वडतकर, पन्नू जी वडतकर। दुलापुर उत्तर प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इजरा, नरगिस जी खातून। इस गीत के अनुरोध करता है अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जय प्रकाश रावल, प्रियंका मुन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल। इसी बीच चुनना चाह रहे छत्रपति संभाजी नगर से राजेश शामले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल जी राजेश। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों, इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से। फिल्म का नाम है चित्रलेखा। गीत के बोल हैं, सखी रे मेरा मन डोले मेरा तन डोले। इस गीत की फरमाइश करता है उमा सिंह, श्रीमती महेश्वरी देवी, सोनू मोनो, राहुल रश्मि, प्रियंका सृष्टि बन्नी, आरुषि शोरिया, दिनेश जी। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं बरेली से मोहम्मद यासीन अंसारी, नरसिंह अंसारी, शमा अंसारी, शशिम अंसारी और माहिनूर जी। इस गीत के अनुरोध करता है रायगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र जी डांगी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति वर्मा, शिवांशी वर्मा। इस गीत के अनुरोध करता है जरूर वरुड़ से बाबा साहेब वाड़ोदी, मीनाक्षी चरपे, रजनी कानेरी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है ग्वालियर से। फिल्म का नाम है राम बलराम, गीत के बोल ही हमसे भूल हो गई। इस गीत की फरमाइश करते हैं सुरेश खुराना, पप्पी किरण खुराना, लव्याजी खुराना। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित जी आहूजा। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं पलेरा छत्तीसगढ़ से बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष जी विश्वकर्मा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं अमरावती से हीरावण शेंडे, शीला देवी शेंडे, सिद्धार्थ जी शेंडे। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं नई बस्ती गंजुटवारा से यासीन हाशमी, नवजा बेगम हाशमी, तोसीफ हाशमी, तोइनूर जी और कलीम अंसारी जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं नवाशहर पंजाब से गंगदीप थांदी, दीप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी मामी का वाणी जी थांदी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा, कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पठरपुर से। फिल्म का नाम है अजनबी, गीत के बोल ही मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है। इस गीत की फरमाइश करता है प्रशांत सिंधी, सुनीता सिंधी, यशराज सिंधी, ऋषि सिंधी, कृष्णा घोड़के जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं खड़वा मध्य प्रदेश से, बेबी सालिया डावर, बेबी हलीमा डावर, बेबी जिक्रा डावर, आयशा खत्री जी। धर्मपुरी से जुड़ना चाह रहे हैं मुशा जी खत्री, ईशा जी खत्री, जाकिर जी खत्री। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं दिलापुर उत्तर प्रदेश से, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं वासिम महाराष्ट्र से, मास्टर विठल सुरोशी, सुषमा सुरोशी, परिधि सुरोशी, मायरा सुरोशी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं दिल्ली से, तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेगा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ रही है राहुल खुराना, रजिता खुराना, केशु खुराना, रिधानजी खुराना। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है जौनपुर से। फिल्म का नाम है विजयपद, गीत के बोल हैं राहों में उनसे मुलाकात हो गई। इस गीत की फरमाइश करता है इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवीजी इरशाद, अजरत अबू समझी। बनारस से जुड़ रहे हैं मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नूरीन अंसारी, आफिया परवीन जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दली, सविता दली, अनिकेत दली, रोहिणी दली, ऋषिकेश दली, जीविका दली, सानिका दली। पुनावली पुणे से जुड़ना चाह रहे हैं अजय सोनोने, करिश्मा सोनोने, अविका सोनोने, विशाखा सोनवने जी। इस गीत की अनुरोध करता है गंजू द्वारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवीज, बेगम इमरान नाज, नवाजिक शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजू गीता श्रीवास, रंजन शाहू, हेमंत नामदेव, नंदन धर्मदास वाधवानी जी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं राहों में उनसे मुलाकात हो गई। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाकर रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है भवानी नगर पैटर्न से। फिल्म का नाम है मोहरा, गीत के बोल ही टिप टिप बरसा पानी। इस गीत की फरमाइश करता है अरुण आरती भाऊ साहेब जी, गंगा सागर, हर्षवर्धन राशि और कार्तिक जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन शर्मा, मयंक जी शर्मा। इस गीत के अनुरोध करता है पंडरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार भगेल, रुक्मणी भगेल, साहिल भारती जी भगेल। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतना भगत, सुलोचना जी भगत। इसी बीच जुड़ना चाह रहे भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, शिव कुमार शर्मा, लोकेश जोशी, बीबी वेदई जोशी, बीबी हंसिका जी जोशी, कुमारी अंकिता जोशी। मध्य प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं श्रीमती जेवंती जी केवट। खड़वा मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं अब्दुल गफार डावर जी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं टिप टिप बरसा पानी। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। और साथियों यह गीत आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

तो साथियों, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460।

0: साथियों आप सब सुन रहे आप वापिस इसको क्या रुक रुक आवाज डबल आ रही है
1: वो तो आएगी पास में इसलिए दोनों बार जाके सुनते हैं।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल और स्वागत करती हूं आपका हमारे आज की सायकालीन सभा में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाघ रेडियो 90.8 FM। साथ ही श्रोता साथियों, बताना चाहूंगी कि स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं। श्रोता साथियों, संध्याकालीन सभा की शुरुआत से पहले आइए जानते हैं पुनः प्रसारित कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सबसे पहले कार्यक्रम हम सुनेंगी भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना। अगला कार्यक्रम शुरू होगा आपकी और हमारी आवाज यानी कि कार्यक्रम युवाओं की आवाज। इसे लेकर आएंगे जागृति भट्ट और हमारी रेडियो साथी कशिश पारेशर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे 5:30 पर। इसके बाद हम रुक करेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन की ओर। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारेशर और हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6 बजे। फिर अगला कार्यक्रम शुरू होगा इसी कड़ी में किसान भाइयों का खेतीबाड़ी। इसे लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारेशर। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। दोस्तों, कार्यक्रमों की रूपरेखा में आगे बढ़ते हुए हमारा अगला कार्यक्रम होगा सच्चा स्वराज। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी जागृति भट्ट और हमारी रेडियो साथी अंजलि पारेशर। अगला कार्यक्रम होगा महिलाओं से जुड़ा विशेष कार्यक्रम घूमर। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी अंजलि पारेशर और हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। इसके बाद आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। इस कार्यक्रम को आप सुन

0: आज के सुविचार।
1: जब से मनुष्य जाति का अस्तित्व बना है, तभी से युद्ध भी अस्तित्व में आया। युद्ध जो कभी धन का द्वंद्व बनकर सामने आता है, तो कभी सुरक्षा का हथियार बनकर, कभी विजय की भूख के लिए, तो कभी पराजय टालने के लिए। किंतु वास्तविकता तो यही है कि यदि आपको आगे बढ़ना है तो बाधाओं से युद्ध तो करना होगा, परंतु युद्ध के लिए सज्ज रहना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण है ये समझना कि युद्ध को टाला कब जा सकता है। क्योंकि सबसे सफल युद्ध वही होता है जो कभी लड़ा ही ना जाए। आप युद्ध में विजय प्राप्त करके स्वयं का मान तो बढ़ा लो, किंतु अपना बल खो दो। इसलिए जहां तक हो सके युद्ध को टालो, इस शक्ति को संग्रहित रखो, ताकि जब ये युद्ध धर्म बन के सामने आए, आप उससे पूरे बल के साथ लड़ सको। राधे राधे। संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? अब आप में से कुछ कहेंगे शस्त्र की, कुछ कहेंगे शास्त्र की, कोई कहेगा बुद्धि की, तो कोई कहेगा बल की। किंतु ये सब अधूरे। संसार में सबसे बड़ी शक्ति है मित्रता। यदि सच्ची मित्रता प्राप्त हो जाए तो वही सबसे बड़ा धन है। जब आप कठिनाइयों में होंगे तो मित्रता शस्त्र बनकर सहायता करे। मार्ग भटक जाओगे तो मित्रता शास्त्र बनकर आपको राह दिखाए। षड्यंत्र में फंस जाओगे तो बुद्धि बनकर बाहर निकाले। अकेले हो जाओगे तो ममता बनकर साथ निभाएगी। तो यदि इस संसार में कुछ कमाना है तो धन नहीं, मित्रता कमाओ। और स्मरण रखिएगा, यदि इस संसार में मित्र बनाना आपकी सबसे बड़ी दुर्बलता है, तो आप इस संसार के सबसे शक्तिशाली प्राणी। राधे राधे। मनुष्य का स्वभाव है कमाना, संग्रह कर, फिर चाहे वो धन हो, नाते हो, संबंध हो, या हो प्रसन्नता। परंतु क्या आपने कभी सोचा है, नियति ने ये संग्रह करने की प्रकृति मनुष्य में क्यों डाली? एक बीज से पौधा पनपता है।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: अरे गोरी, इतने सुस्त क्यों दिख रही हो? कुछ खाया पिया नहीं है क्या?
2: अरे दीदी, क्या करूं? कुछ खाने पीने का तो मन ही नहीं करता है मेरा।
1: अरे गोरी, ये तो गर्भावस्था में होता ही है। जी मचलाएगा, खाने का मन नहीं करेगा, पर अभी तो खाना ज्यादा जरूरी है। और खाने में भी तुम्हें दूध, दही, दालें, हरी सब्जियां खानी चाहिए। इससे तुम्हारे बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा।
2: अरे वाह दीदी, अगर ये सब खाने से बच्चे का विकास अच्छा होगा तो मैं आज से ही दूध पीना शुरू कर दूंगी और साथ में हरी सब्जियां और दाल भी खूब खाऊंगी।
1: ये हुई ना बात गोरी।
3: याद रहे, गर्भावस्था में सबसे जरूरी है पोषक खाना। वागर रेडियो द्वारा जनहित में

0: कार्यक्रम युवाओं के आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश हमारी बातें रहने वाली है सामाजिक व्यवहार की सकारात्मकता को लेकर। मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा जाता है, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि वो अकेले नहीं बल्कि समाज के साथ मिलकर जीवन जीता है। परिवार हो गया, मित्र, पड़ोसी, विद्यालय, कार्यस्थल और समाज, इन सभी के साथ हमारा व्यवहार ही हमारे व्यक्तित्व की पहचान बनता है।
0: जी हाँ।
1: यदि हमारा व्यवहार सकारात्मक, विनम्र और सहयोगपूर्ण हो तो न केवल हमारे संबंध मजबूत होते हैं बल्कि समाज में भी प्रेम, शांति और सद्भावना का वातावरण बनता है। श्रोता साथियों, सामाजिक व्यवहार की सकारात्मकता व्यक्ति को ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य करती है। कशिश
0: बिल्कुल, जागृति जी आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर युवा साथियों से हमारी ढेर सारी बातें होंगी। लेकिन जैसा कि हमारे युवा साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से मनोरंजन करना अच्छा लगता है, तो क्यों ना श्रोता साथियों को हम शुरुआत में पहले एक प्यारे से गीत के साथ मनोरंजन करवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वाघ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि युवाओं के लिए सामाजिक व्यवहार की सकारात्मकता का क्या महत्व है। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, हम सामाजिक प्राणी कहे जाते हैं। हम अकेले जीवन नहीं जी सकते जागृति जी, बल्कि परिवार, समाज, मित्र, विद्यालय, कार्यस्थल और देश, इन सबके बीच रहकर ही हमारा व्यक्तित्व विकसित होता है। दोस्तों, समाज में रहने के लिए केवल शिक्षा, शक्ति या फिर धन पर्याप्त नहीं होता, बल्कि व्यवहार सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है।
1: बिल्कुल।
0: और हम देखते हैं जागृति जी के किसी व्यक्ति का व्यवहार या उसकी पहचान बनाता है। मधुर वाणी, सम्मानजनक आचरण, सहयोग की भावना, सकारात्मक सोच समाज को जोड़ने का कार्य करती है साथियों। और यही हम कह सकते हैं कि सामाजिक व्यवहार की सकारात्मकता है।
1: बिल्कुल कशिश।
0: अगर बात करें तो आज के जो युवा साथी हैं, वो देश की सबसे बड़ी शक्ति है। देखते हैं जागृति जी की युवाओं के सपने, उनकी ऊर्जा, उनकी सोच से ही भविष्य का निर्माण होता है। और यदि युवा सकारात्मक सामाजिक व्यवहार अपनाएंगे तो परिवार भी इससे मजबूत होगा और समाज में भाईचारा भी बढ़ेगा।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा, क्योंकि कहा गया है कि जहां व्यवहार में मिठास होती है वहीं रिश्तों में विश्वास होता है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि सकारात्मक व्यवहार सबसे पहले परिवार से शुरू होता है। माता पिता, भाई बहन और बुजुर्गों के प्रति सम्मान और प्रेम हमारे संस्कारों को दर्शाता है।
0: जी जी।
1: जो बच्चा घर में अच्छे व्यवहार को सीखता है वही आगे चलकर समाज का आदर्श नागरिक बनता है। यदि परिवार में आपसी समझ और सहयोग हो तो घर में सुख और शांति बनी रहती है।
0: बिल्कुल।
1: हम देखते हैं कि विद्यालय भी सामाजिक व्यवहार को विकसित करने का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षक बच्चों को केवल पढ़ाई नहीं सिखाते बल्कि अनुशासन, सहयोग और नैतिकता का भी पाठ पढ़ाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: विद्यार्थियों को अपने सहपाठियों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और श्रोताओं, जो विद्यार्थी दूसरों की सहायता करता है और सबके साथ समान व्यवहार करता है वह समाज में भी सम्मान प्राप्त करता है।
0: जी जी।
1: यही कशिश, अगर हम बात करें सकारात्मकता की तो सकारात्मक सामाजिक व्यवहार का सबसे बड़ा गुण है सहानुभूति है। जब हम किसी दुखी व्यक्ति का दर्द समझते हैं और उसकी सहायता करते हैं तब मानवता जीवित रहती है। समाज में गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों की मदद करना केवल दान नहीं बल्कि एक श्रेष्ठ सामाजिक व्यवहार है।
0: बिल्कुल।
1: इससे समाज में भाईचारा और अपनापन बढ़ता है। आज हम देखते हैं कि कई लोग केवल अपने स्वार्थ में जीते हैं।
0: जी हाँ।
1: वे दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करते। यही कारण है कि रिश्तों में दूरी और समाज में तनाव बढ़ता जा रहा है। यदि हर व्यक्ति अपने व्यवहार में थोड़ी सकारात्मकता लाए तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। श्रोताओं,
0: बिल्कुल।
1: मुस्कुरा कर बात करना, धन्यवाद कहना, गलती होने पर क्षमा मांगना और दूसरों का सम्मान करना, ये छोटी बातें समाज को सुंदर बनाती है।
0: बिल्कुल जागृति जी। और हम देखते हैं कि आज मोबाइल और इंटरनेट के दौर में लोगों के पास साधन तो बहुत हैं, लेकिन आपसे संवाद कम होता जा रहा है। लोग एक दूसरे से मिलने के बजाय स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताने लगे हैं। ऐसे समय में दोस्तों सामाजिक व्यवहार की सकारात्मकता पहले से और अधिक जरूरी हो गई है।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि ये केवल शिष्टाचार नहीं बल्कि जीवन को सुंदर बनाने की एक कला भी है। हम देखते हैं कि सकारात्मक सामाजिक व्यवहार का मतलब होता है दूसरों के प्रति सम्मान, सहानुभूति, धैर्य, ईमानदारी और प्रेमपूर्ण व्यवहार रखना। जागृति जी, ये व्यवहार न केवल दूसरों को सुख देता है बल्कि स्वयं व्यक्ति को भी मानसिक शांति और आत्मविश्वास प्रदान करता है।
1: बिल्कुल।
0: हम देखते हैं दोस्तों कि सामाजिक व्यवहार वह तरीका है जिसके माध्यम से हम समाज के लोगों के साथ बातचीत कर पाते हैं, संबंध बना पाते हैं और अपने विचार उन तक व्यक्त कर पाते हैं। और ये जो व्यवहार होता है जागृति जी, वही हमारे संस्कार, सोच, शिक्षा और अनुभवों से प्रभावित होता है।
1: बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कशिश कि कार्यस्थल पर भी सामाजिक व्यवहार की सकारात्मकता बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो व्यक्ति अपने सहकर्मियों के साथ सम्मान और सहयोग से व्यवहार करता है वो टीम का प्रिय सदस्य बन जाता है। हम कहना चाहेंगे श्रोताओं कि सामाजिक व्यवहार की सकारात्मकता केवल शब्दों तक सीमित नहीं होती बल्कि हमारे कार्यों में भी दिखाई देती है। सड़क पर नियमों का पालन करना, सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखना, दूसरों की सुविधा का ध्यान रखना, ये सारी बातें जो हैं वो सकारात्मक सामाजिक व्यवहार के उदाहरण हैं।
0: बिल्कुल।
1: जो व्यक्ति समाज के नियमों का सम्मान करता है कशिश, वही सच्चे अर्थों में जिम्मेदार नागरिक कहलाता है।
0: जी हाँ जागृति जी। तो जैसा कि हम युवा साथियों से बातें कर ही रहे हैं सकारात्मक सामाजिक व्यवहार को लेकर, तो ये बातें हमारी आगे ऐसे और भी जारी रहेंगी, लेकिन अभी क्यों ना हमारे श्रोता साथियों को यहाँ पर गीत सुनवाएं हम पहले।
1: बिल्कुल। तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि गीत से पहले हमारी बातें चल रही थी सकारात्मक व्यवहार को लेकर, तो कशिश, हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि शब्दों में ही प्यार और सम्मान होता है, तभी इंसान श्रेष्ठ बनता है।
1: बिल्कुल,
0: कहने का तात्पर्य यही श्रोता साथियों कि सकारात्मक सामाजिक व्यवहार का प्रभाव केवल दूसरों पर ही नहीं बल्कि स्वयं हमारे जीवन पर भी पड़ता है। अच्छा व्यवहार व्यक्ति को मानसिक शांति देता है, ऐसे लोग अधिक मित्र बनाते हैं, समाज में सम्मान पाते हैं और कठिन समय में सबका सहयोग प्राप्त करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसके विपरीत नकारात्मक व्यवहार व्यक्ति को अकेला बना देते हैं। इतिहास गवाह है श्रोता साथियों कि जिन महान व्यक्तियों ने समाज में प्रेम, शांति और सद्भावना का संदेश दिया, उन्हें आज भी सम्मान से याद किया जाता है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि कशिश, महात्मा गांधी जी की हम बात करें तो महात्मा गांधी जी ने अहिंसा और प्रेम का मार्ग अपना कर दुनिया को सकारात्मक व्यवहार की शक्ति दिखाई। उनका मानना था कि विनम्रता और सत्य से बड़ा कोई हथियार नहीं। इसी प्रकार श्रोता साथियों, अनेक समाज सुधारकों ने अपने अच्छे व्यवहार से समाज में परिवर्तन लाने का कार्य किया है।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ दोस्तों ऐसा भी बताया जाता है कि परिवार से ही शुरू होती है सकारात्मकता, क्योंकि जागृति जी किसी भी व्यक्ति का पहला विद्यालय हम जैसा कि जानते हैं कि उसका परिवार होता है।
0: बिल्कुल,
1: बच्चे अपने माता पिता और घर के वातावरण से ही व्यवहार सीखते हैं। यदि श्रोता साथियों घर में प्रेम, सम्मान और सहयोग का माहौल होगा तो हम कह सकते हैं कि बच्चे भी वैसा ही व्यवहार सीखते हैं। लेकिन वहीं यदि घर में हर समय झगड़े और कटुता का माहौल हो तो उसका पूरा असर बच्चों के स्वभाव पर पड़ता ही है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए जागृति जी परिवार की जिम्मेदारी होती है कि वह बच्चों को और युवाओं को अच्छे संस्कार दे, जैसे कि साथ बैठकर भोजन करना, एक दूसरे की बातें सुनना और समझना, बच्चों को सम्मान देना सिखाना, गुस्से में कठोर शब्दों से बचना, छोटी छोटी खुशियों को साझा करना और साथ ही जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करना। दोस्तों, इन सभी चीजों से हम परिवार में सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा दे सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि हम देखते हैं कि अच्छा संवाद जो होता है वो सकारात्मक व्यवहार की पहचान होता है। जो व्यक्ति जागृति जी अपनी बात विनम्रता से कहता है वह लोगों का दिल जीत लेता है।
0: बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को एक कहानी के माध्यम से बताना चाहेंगे कशिश कि व्यवहार से ही हमारी पहचान बनती है।
1: बिल्कुल,
0: श्रोता साथियों कहानी हमें बताती है कि हमारा जो व्यवहार है, हमारी जो सकारात्मकता है वो कितनी जरूरी है। जैसे कि एक गांव में दो दुकानदार थे। पहला दुकानदार हमेशा ग्राहकों से कठोर भाषा में बात करता था,
1: जी जी,
0: जबकि जो दूसरा दुकानदार था वो मुस्कुराकर सबका स्वागत करता था और विनम्रता से व्यवहार करता था। धीरे धीरे लोग दूसरे दुकानदार की दुकान पर अधिक आने लगे।
1: बिल्कुल,
0: पहला दुकानदार सोच में पड़ गया कशिश कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा सामान तो हर जगह मिलता है लेकिन अच्छा व्यवहार हर जगह नहीं मिलता।
1: जी हाँ,
0: उस दिन से पहले दुकानदार ने भी अपना व्यवहार बदल लिया और उसकी दुकान पर भी लोग आने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है दोस्तों कि सकारात्मक व्यवहार लोगों के दिल जीत लेता है। धन, शक्ति और पद कुछ समय के लिए सम्मान दिला सकते हैं, लेकिन स्थायी सम्मान केवल अच्छे व्यवहार से मिलती है। आज समाज को सबसे अधिक आवश्यकता सकारात्मक सोच और अच्छे व्यवहार की है।
1: बिल्कुल,
0: यदि हम दूसरों के प्रति सम्मान, प्रेम और सहयोग की भावना रखें तो समाज में झगड़े, भेदभाव और नफरत कम हो सकती है।
1: बिल्कुल,
0: हमें समझना होगा श्रोताओं कि समाज तभी मजबूत बनेगा जब उसके लोग एक दूसरे के साथ सकारात्मक व्यवहार करेंगे।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि सकारात्मक व्यवहार और सफलता का गहरा संबंध होता है। जैसे कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल प्रतिभा पर्याप्त नहीं होती जागृति जी, व्यवहार भी उतनी ही महत्वपूर्णता रखता है। दोस्तों, कई लोग पढ़ाई में अच्छे होते हैं लेकिन व्यवहार खराब होने के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। वहीं कुछ लोग अपने अच्छे व्यवहार से सबका दिल जीत लेते हैं और जीवन में सफल हो जाते हैं।
0: जी हाँ
1: दोस्तों, किसी भी नौकरी, व्यवसाय या सामाजिक कार्य में टीम वर्क जरूरी होता है। टीम में वही व्यक्ति पसंद किया जाता है जो सहयोगी और सकारात्मक हो। जागृति जी,
0: बिल्कुल,
1: देखा जाता है कि सामाजिक व्यवहार की सकारात्मकता जीवन को सुंदर और सफल बनाती है, क्योंकि ये केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए भी जरूरी होती है। साथियों,
0: जी हाँ,
1: सकारात्मक व्यवहार से परिवार मजबूत बनते हैं, समाज में शांति आती है और देश प्रगति करता है। दोस्तों,
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में हमारे युवा साथियों को यह समझना होगा जागृति जी कि आधुनिकता के साथ संस्कार भी बहुत जरूरी है। तकनीक जीवन को आसान बना सकती है लेकिन अच्छे रिश्ते केवल अच्छे व्यवहार से ही बनते हैं।
0: जी हाँ,
1: यदि हमारे युवा साथी प्रेम, सम्मान, सहयोग और संवेदनशीलता को अपने जीवन का हिस्सा बना ले तो समाज में साथियों एक नई सकारात्मक ऊर्जा पैदा हो सकती है।
0: जी
1: हाँ, क्योंकि छोटी छोटी अच्छाइयां मिलकर ही बड़े परिवर्तन लाती है।
0: बिल्कुल कशिश, हम कह सकते हैं कि सामाजिक व्यवहार की सकारात्मकता मानव जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। यह न केवल रिश्तों को मजबूत बनाती है बल्कि समाज को भी खुशहाल और प्रगतिशील बनाती है।
1: बिल्कुल,
0: अच्छे व्यवहार से हम दूसरों के जीवन में खुशी ला सकते हैं और स्वयं भी सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमें अपने शब्दों, विचारों और कार्यों में सकारात्मकता लानी चाहिए। श्रोताओं,
1: बिल्कुल,
0: हर व्यक्ति यदि संकल्प ले कि वह दूसरों के साथ प्रेम, सम्मान और सहयोग से व्यवहार करेगा तो समाज में शांति और सद्भावना का नया प्रकाश फैल सकता है।
1: जी हाँ।
0: इसलिए श्रोता साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि सकारात्मक व्यवहार को अपनाना बहुत जरूरी है, तभी हम सुंदर समाज का निर्माण कर सकते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी। तो दोस्तों, अच्छा व्यवहार वह दीपक है जो केवल अपना ही नहीं बल्कि दूसरों का जीवन भी रोशन कर देता है।
0: बिल्कुल,
1: यदि युवा सकारात्मक सोच और संवेदनशील व्यवहार अपनाएं तो समाज में खुशहाली, शांति और भाईचारे की नई रोशनी फैल सकती है। जागृति जी, इन्हीं आशाओं के साथ दोस्तों अब हम कार्यक्रम से विदा लेना चाहेंगे, क्योंकि देख रहे हैं बातें हमारी आपसे ढेर सारी हो चुकी हैं और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल।
1: तो जागृति जी, युवा साथियों से और इस कार्यक्रम से हम विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना दोस्तों को यहाँ पर एक प्यारा सा गीत सुनवाएं।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम आज के इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम युवाओं की आवाज में, वो आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी हाँ,
0: आपको हमारा आज का कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: भाइयों बहनों, जरूर रहे ग्राम सभा में बोले बोले हैं तो फैसला मजबूत थे हैं। वन अधिकार सिर्फ कानून नहीं, माँ जंगल तक की जरूर दोनों में रिश्तों है। जे जंगल में हमसे है ये उन्होंने रक्षा करे है। तो आओ बोला ने भागीदारी बढ़ावा, ग्राम सभा मजबूत बनावा, ने जंगल में भविष्य सुरक्षित करा। बोला ने आवाज विकास में असली पहचान है।
1: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा था की दोस्ती करवी है।
2: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
1: हिंडो स्कूल जा अपड़े, अपड़ा भी अपना पूरा करो।
2: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
2: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
1: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी साथी कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: कशिश, आज कार्यक्रम में श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है कि बच्चों में झूठ बोलने की आदत क्यों आती है, यानी कि साथियों बच्चों को सच्चाई मासूमियत और सरलता का प्रतीक माना जाता है।
0: बिल्कुल,
1: छोटे बच्चे शुरुआत में जो देखते हैं वही सीखते हैं। वे बिना किसी छल कपट के अपनी बात कह देते, लेकिन धीरे धीरे कई बच्चों में झूठ बोलने की आदत दिखाई देने लगती है। कभी वे डांट से बचने के लिए झूठ बोलते हैं, तो कभी अपनी गलती छिपाने के लिए, तो कभी दूसरों की नकल करते हुए। आज यह समस्या केवल घरों तक सीमित नहीं रह गई है कशिश, बल्कि स्कूल, समाज और बच्चों के व्यवहार में भी दिखाई देने लगी है। कई माता पिता इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि उनका बच्चा छोटी छोटी बातों पर झूठ क्यों बोलने लगा है।
0: बिल्कुल,
1: असल में कोई भी बच्चा जन्म से झूठा नहीं होता। उसके आसपास का माहौल, व्यवहार, डर, दबाव और अनुभव धीरे धीरे उसे झूठ बोलने की ओर ले जाते हैं।
0: जी हाँ,
1: बच्चों को केवल डांटना या सजा देना समाधान नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हम झूठ के पीछे कारणों को समझें और बच्चों को सच बोलने का सुरक्षित वातावरण दें।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हमारे अभिभावकों से हमारी ढेर सारी बातें होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: जी हाँ,
0: तो क्यों ना मनोरंजन पहले एक गीत के साथ करें हम।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि बात कर रहे हैं कि बच्चों में झूठ बोलने की आदत क्यों आती है। साथियों, अगर यहाँ पर बात करें कि झूठ बोलना होता क्या है, तो जब कोई बच्चा जानबूझकर ऐसी बात कहे जो सच न हो अंजलि जी, उसे झूठ बोलना कहते हैं। बच्चों में झूठ कई प्रकार का हो सकता है साथियों, जैसे कि गलती छिपाने के लिए झूठ, डर की वजह से झूठ, ध्यान पाने के लिए झूठ, या फिर किसी की नकल करके झूठ।
1: बिल्कुल
0: साथियों, छोटे बच्चों को कई बार कल्पना और झूठ में अंतर समझ नहीं आता, इसलिए हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच जो अंतर है वो समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वे कहानी की तरह बातें करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जिसे हमेशा गलत नहीं माना जा सकता।
1: इसी के साथ छोटा साथियों, बात आती है कि बच्चों में झूठ बोलने की आदत के क्या कारण हो सकते हैं। श्रोता साथियों, यह सबसे बड़ा कारण है जब हम बच्चों को डांट और सजा देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जब बच्चे हर छोटी गलती पर डांट खाते हैं, मारे जाते हैं, अपमानित किए जाते हैं, तो वे सच बोलने से डरने लगते हैं। उन्हें लगता है कि झूठ बोलकर वे सजा से बच सकते हैं।
0: जी हाँ।
1: उदाहरण के लिए, अगर बच्चा गलती से कोई चीज तोड़ दे, उसे डर हो कि बहुत डांट पड़े।

0: कि तो वो सच छिपाने की कोशिश करेगा। वहीं बच्चे वही सीखते हैं कशिश जो वे अपने आसपास देखते हैं। अगर घर में बड़े फोन पर झूठ बोलते हैं, बहाने बनाते हैं, सच छिपाते हैं तो बच्चा भी यही सीखने लगता है। कई बार माता पिता खुद कहते हैं किसी से कहना मत या बोल देना कि मैं घर नहीं हूँ। ऐसी बातें बच्चों के मन पर गहरा असर डाल देती है।
1: बिल्कुल,
0: जब बच्चों पर हर समय अच्छा करने का दबाव होता है तो वे अपनी असफलता छिपाने लगते हैं, जैसे कि कम नंबर आने पर झूठ बोलना, होमवर्क पूरा न होने का बहाना बनाना। बच्चा सच इसलिए नहीं बोल पाता क्योंकि उसे निराशा और डांट का डर होता है।
1: बिल्कुल,
0: हम कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों कि कई बार बच्चे केवल इसलिए झूठ बोलते हैं ताकि लोग उनकी तरफ ध्यान दें। अगर बच्चा खुद को अनदेखा महसूस करता है तो वह बढ़ा चढ़ा कर बातें करता है, नकली कहानियां बना देता है, झूठ बोलकर खुद को खास दिखाने की कोशिश करता है।
1: बिल्कुल,
0: तो कह सकते हैं कि ये कुछ ऐसे कारण है महत्वपूर्ण जिसके कारण बच्चा जो है वो झूठ बोलता है।
1: जी हाँ दिली जी, इसी के साथ अगर बात करें, कई बार बच्चे अपने दोस्तों को देखकर भी झूठ बोलना सीखते हैं, क्योंकि अगर उनके आसपास का माहौल गलत हो साथी हो तो वे जल्दी प्रभावित भी हो जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि आज बच्चे इंटरनेट और सोशल मीडिया से बहुत प्रभावित होते हैं। कई बार वे दिखावे की दुनिया से इतने प्रभावित हो जाते हैं श्रोता साथियों कि वे झूठ बोलने लगते हैं।
0: बिल्कुल,
1: हर चीज को छिपाना सीख जाते हैं और सच से ज्यादा इमेज को महत्व देने लगते हैं।
0: जी जी,
1: हम कह सकते हैं कि इससे बच्चों में आत्मविश्वास की कमी देखी जाती है, क्योंकि कुछ बच्चे अपनी कमियों को छिपाने के लिए झूठ बोलते हैं।
0: बिल्कुल,
1: उन्हें लगता है कि अगर वे सच बताएंगे किसी को तो लोग उनका मजाक उड़ा सकते हैं, जिसके कारण बच्चे झूठ बोलते हैं। अंजलि जी,
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम ये जान पा रहे हैं कि बच्चों में झूठ बोलने की आदत क्यों आती है और इसके क्या कारण है। आगे भी ये बातें निरंतर हमारे श्रोता साथियों से बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि बच्चों में झूठ बोलने की आदत के क्या कारण होते हैं,
1: बिल्कुल
0: ही बात करें कि इसके क्या दुष्प्रभाव है, तो हम देखते हैं कि बच्चे जो है धीरे धीरे जिम्मेदारियों से बचने लगते हैं, जिसका असर जो है वो पढ़ाई पर पड़ता है। एक बार विश्वास टूट जाता है दोस्तों, तो रिश्ते कमजोर होने लगते हैं।
1: जी हाँ,
0: झूठ बोलने वाला बच्चा अंदर ही अंदर डर में जीने लगता है और उसका तनाव बढ़ता है। धीरे धीरे झूठ की आदत बन जाती है तो बच्चा सच बोलने से बचने लगता है और उसका असर जो है वो उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है।
1: बिल्कुल
0: ही बात करें कि बच्चों को सच बोलना कैसे सिखाएं, इसके क्या समाधान हो सकते हैं। तो श्रोता साथियों, हमें ऐसा माहौल बनाना है जहां बच्चे सच बोल सके। अगर बच्चा स्वीकार करता है अपनी गलती, तो पहले उसकी बात को हमें शांत होकर सुनने की जरूरत है और जरूरत से ज्यादा डांट बच्चों को झूठ की ओर धकेल सकती है। इसलिए हमें हर गलती की ज्यादा सजा बच्चों को नहीं देनी है।
1: बिल्कुल,
0: कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चों को हम बातों ही बातों में बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: इसी के साथ बच्चों के सामने हमेशा सच बोलने की कोशिश करें। हमें खुद उदाहरण बनना होगा कभी झूठ नहीं बोलने का, तभी हमारे बच्चे भी इन सारी चीजों को अपने जीवन में अपना पाएंगे। अगर बच्चा अपनी गलती सच सच बता देता है तो उसकी ईमानदारी की हमें तारीफ करनी है। उनसे दोस्ती की तरह बात करें ताकि बिना डर के कशिश में अपनी बात हमें कह सकें।
1: जी
0: और
1: हाँ,
0: कहानियों के माध्यम से भी बच्चों को सच्चाई का महत्व समझाया जा सकता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ अब यहाँ पर अगर बात करें तो श्रोता साथियों, कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ कही गई है कि बच्चे झूठ बोलकर बुरे नहीं बनते, कई बार वे सिर्फ डर जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: अगर बच्चे सच छिपाने लगे हैं तो शायद उन्हें सच बोलने का सुरक्षित माहौल ही न मिला। सच्चाई सिखाने से पहले अपने बच्चों को भरोसा करना सिखाएं। हम कह सकते हैं अंजलि जी कि परिवार और समाज की इसमें बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, जैसे कि बच्चों की ईमानदारी की शुरुआत घर से ही होती है। अगर परिवार बच्चों को प्यार दे, समझ दे, विश्वास दे, तो बच्चा सच बोलने में डर महसूस नहीं करेगा।
0: बिल्कुल,
1: वहीं स्कूल और समाज को भी ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहाँ बच्चे अपनी गलतियों से सीख सके, न कि हर समय डर के माहौल में रहे।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि हम देख सकते हैं कि बच्चों में झूठ बोलने की आदत अचानक पैदा नहीं होती, बल्कि ये उनके आसपास के माहौल, डर, दबाव और अनुभवों का ही परिणाम होती है।
0: जी हाँ,
1: इसलिए दोस्तों, बच्चों को केवल झूठा कह देना समस्या का समाधान नहीं है। जरूरत बस इस बात की है कि हम उनके मन को समझें, उनकी भावनाओं को सुने और उन्हें ऐसा वातावरण दें जहां सच बोलना सुरक्षित महसूस होता हो।
0: जी,
1: हमें ये याद रखना चाहिए कि हर बच्चा जन्म से ईमानदार होता है। अगर उसे प्यार, विश्वास और सही मार्गदर्शन मिले तो वह सच बोलने की आदत आसानी से सीखता है अंजलि जी।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि बच्चे वही बनते हैं जो वे अपने आसपास देखते हैं और महसूस करते हैं। इसलिए बच्चों को सच्चाई सिखाने से पहले दोस्तों, हमें खुद सच्चाई का उदाहरण बनना होगा।
0: जी बिल्कुल, इसी के साथ श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि बच्चों में झूठ बोलने की आदत केवल एक व्यवहारिक कमी नहीं है, बल्कि ये उनके मन में छिपे डर, असुरक्षा, दबाव और भावनात्मक जरूरतों का संकेत भी हो सकती है।
1: बिल्कुल,
0: जब कोई बच्चा झूठ बोलता है तो कई बार वह गलत बनने की कोशिश नहीं कर रहा होता, बल्कि वह खुद को बचाने, डांट से दूर रहने और अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश कर रहा होता है।
1: जी हाँ,
0: इसलिए बच्चों को समझे बिना केवल उन्हें दोष देना समस्या को और बढ़ा सकता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए आज जरूरत है कशिश इस बात की कि हम बच्चों के साथ ऐसा रिश्ता बनाएं जहां वे बिना डर के सच बोल सके, जहां गलती होने पर उन्हें अपमान नहीं बल्कि समझ और मार्गदर्शन मिले। क्योंकि कशिश जब बच्चा ये महसूस करता है कि उसकी बात सुनी जाएगी तो उसे केवल डांटा नहीं जाएगा, तब वह सच बोलने का साहस जुटा पाता है। हमें ये भी समझना होगा कि बच्चे सीखते कम है और देखते जाता है। अगर घर, स्कूल और समाज में ईमानदारी का वातावरण होगा तो बच्चे भी सच और विश्वास की राह पर चलना सीखेंगे। लेकिन अगर वे हर जगह दिखावा, डर और झूठ देखेंगे तो वही उनके व्यवहार का हिस्सा बन जाएगा। इसलिए बच्चों को सच बोलना सिखाने का सबसे अच्छा तरीका केवल उपदेश देना नहीं बल्कि अपने व्यवहार से उदाहरण प्रस्तुत करना है।
1: बिल्कुल,
0: प्यार, विश्वास और धीर और संवाद, यही वे आधार है कशिश, जिनसे बच्चों के अंदर ईमानदारी की मजबूत नींव तैयार होती है।
1: जी
0: हाँ, याद रखना श्रोता साथियों कि हर बच्चा एक खुली किताब की तरह होता है, उसमें क्या लिखा जाएगा ये काफी हद तक परिवार और समाज के व्यवहार पर निर्भर करता है।
1: बिल्कुल,
0: अगर हम बच्चों को भरोसा देना सीख जाएं तो वे सच बोलना भी सीख जाएंगे, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहाँ झूठ की जरूरत धीरे धीरे खत्म होने लगती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है, और अब हम देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे साथियों को एक और प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
0: जी हाँ।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम और हमारी बातें अब यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ,
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेश्वर को।
1: नमस्कार।

0: लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
2: भाई ने बोलो, आप एकारे विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। हो वे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा। होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो। होवे आज नाना कदम है, ये अबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है। वागड़ रेडियो वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
1: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बात रहने वाली है, अच्छे संस्कार सबसे बड़ी दौलत क्यों है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि कहा गया अंजलि कि धन खो जाए तो कुछ नहीं खोया, स्वास्थ्य खो जाए तो बहुत कुछ खोया, पर यदि संस्कार खो जाए तो सब कुछ खो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: आज के समय में हर व्यक्ति धन प्रसिद्धि और सफलता के पीछे भाग रहा है। लोग बड़े घर, महंगी गाड़ियाँ, ऊंचे पद पाने को ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानने लगे हैं। लेकिन यदि इंसान के पास अच्छे संस्कार नहीं है तो उसका सारा वैभव भी अधूरा है। संस्कार वो अमूल्य निधि है जो मनुष्य को भीतर से महान बनाते हैं। यही कारण है अंजलि कि कहा जाता है कि अच्छे संस्कार सबसे बड़ी दौलत है।
0: बिल्कुल चक्रवर्ती जी, आपने सही कहा। तो आज कार्यक्रम सच्चा स्वराज में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें होंगी, लेकिन हम हमारे दोस्तों को कार्यक्रम के पहले गीत के साथ में मनोरंजन करवाना चाहेंगे। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले अंजलि हमने विषय से अवगत करवाया था हमारे श्रोता साथियों को कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बातचीत का विषय है अच्छे संस्कार सबसे बड़ी दौलत क्यों है।
1: बिल्कुल।
0: तो जैसे कि कहना चाहेंगे अंजलि हमारे श्रोता साथियों से कि संस्कार केवल नमस्ते करना या बड़ों के पैर छूना नहीं है। संस्कार का अर्थ है अच्छा व्यवहार, विनम्रता, ईमानदारी, दूसरों के प्रति सम्मान, दया, सहनशीलता और जिम्मेदारी की भावना।
1: बिल्कुल।
0: संस्कार इंसान के व्यक्तित्व की पहचान होते हैं। जिस व्यक्ति के पास अच्छे संस्कार होते हैं वो हर परिस्थिति में सही निर्णय लेता है, वह दूसरों का भला सोचता है और समाज में प्रेम तथा सम्मान प्राप्त करता है।
1: बिल्कुल।
0: संस्कारों की रोशनी जहाँ जलती है वहीं इंसानियत की खुशबू फैलती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से के संस्कार वे मूल्य और आदतें हैं जो हमें सही और गलत का फर्क समझाते हैं। बड़ों का सम्मान करना, सच बोलना, दूसरों की मदद करना, विनम्र रहना, जिम्मेदारी निभाना और ईमानदारी से जीवन जीना, ये सब अच्छे संस्कारों की पहचान होती है।
0: बिल्कुल।
1: और जिस व्यक्ति के पास अच्छे संस्कार होते हैं वह समाज में समानता पाता है, लोगों का विश्वास जीतता है और अपने परिवार व समाज को मजबूत बनाता है। आज हम देखते हैं कि समाज में बढ़ती असहिष्णुता, झूठ, दिखावा, स्वार्थ और रिश्तों में दूरी का एक बड़ा कारण संस्कारों की कमी भी है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए यह विषय केवल परिवार तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे समाज और आने वाली पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है। श्रोता साथियों, संस्कार केवल शिक्षा नहीं होते बल्कि जीवन जीने का सही तरीका होते हैं। ये वह गुण होते हैं जागृति जी जो इंसान के व्यवहार में दिखाई देते हैं। अच्छे संस्कारों में बड़ों का सम्मान, छोटों से प्रेम, सच बोलना, अनुशासन, धैर्य, मेहनत, ईमानदारी, सहानुभूति, जिम्मेदारी और विनम्रता। श्रोता साथियों, संस्कार किताबों से कम और व्यवहार से ज्यादा सीखे जाते हैं। बच्चा जो वातावरण घर और समाज में दिखता है वही उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए कह सकते हैं जागृति जी हम कि धन इंसान को सुविधाएं दे सकता है लेकिन सम्मान नहीं खरीद सकता। अच्छे संस्कार इंसान को वह सम्मान दिलाते हैं जो किसी भी दौलत से बड़ा होता है। एक अमीर लेकिन अभद्र व्यक्ति की तुलना में लोग उस गरीब लेकिन संस्कारी व्यक्ति को ज्यादा पसंद करेंगे जो विनम्र और मददगार होता है। अच्छे संस्कार रिश्तों को मजबूत बनाते हैं, लोगों को विश्वास दिलाते हैं, कठिन समय में सहारा बनते हैं और समाज में पहचान दिलाते हैं। यही कारण है कि संस्कारों को सबसे बड़ी दौलत कहा जाता है।
0: बिल्कुल अंजलि, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों से हम ये कहना चाहेंगे कि सच्चा स्वराज केवल देश की राजनीतिक आजादी नहीं है। सच्चा स्वराज तब होता है जब व्यक्ति अपने विचारों, व्यवहारों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है।
1: बिल्कुल।
0: महात्मा गांधी जी भी मानते थे कि यदि नागरिक के चरित्र और संस्कार अच्छे नहीं होंगे तो स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रहेगा।
1: बिल्कुल।
0: यदि समाज में लोग झूठ बोलेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, दूसरों का हक छीनेंगे और केवल स्वार्थ के लिए जिएंगे तो ऐसा समाज कभी सुखी नहीं बन सकता। इसलिए अच्छे संस्कार ही सच्चे स्वराज की नींव है।
1: बिल्कुल।
0: देश तभी महान बनता है जब हर नागरिक संस्कारी बनता है। बच्चे सबसे पहले अपने परिवार से सीखते हैं, माता पिता का व्यवहार ही

0: बच्चों के जीवन की दिशा तय करता है।
1: जी जी।
0: यदि घर में प्रेम है, सम्मान है और ईमानदारी का वातावरण होगा तो बच्चे भी वही सीखेंगे।
1: बिल्कुल।
0: आज कई माता पिता बच्चों को महंगे खिलौने देते हैं, मोबाइल तो दे देते हैं, लेकिन समय और संस्कार नहीं दे पाते। परिणाम स्वरूप बच्चे आधुनिक तो बन जाते हैं पर संवेदनशील नहीं बन पाते।
1: जी जी।
0: इसलिए श्रोता साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि संस्कार सिखाने का सबसे अच्छा तरीका उपदेश नहीं बल्कि उदाहरण है। जब बच्चे अपने माता पिता को, बुजुर्गों का सम्मान करते देखते हैं, जरूरतमंदों की सहायता करते देखते हैं, तब वे स्वयं ही वैसा बनने लगते हैं।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए कहा गया है कि बच्चों को केवल शिक्षा नहीं संस्कारों की दिशा भी दी जाए।
1: बिल्कुल शकृति जी, हम देखते हैं कि जीवन में हर इंसान को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अच्छे संस्कार इंसान को सही रास्ता चुनने की ताकत देते हैं। श्रोता साथियों, जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से मेहनत करता है, धैर्य रखता है, दूसरों का सम्मान करता है, तो वह धीरे धीरे विश्वास और सफलता दोनों हासिल करता है।
0: बिल्कुल।
1: संस्कार इंसान को केवल अच्छा नागरिक नहीं बनाते बल्कि उसे अंदर से मजबूत भी बनाते हैं। तो जैसा कि जागृति जी, आज कार्यक्रम में हम जान पा रहे हैं कि संस्कार किस तरीके से हमारे जीवन की सबसे बड़ी दौलत हो सकते हैं, तो ये बातें निरंतर आगे कार्यक्रम के माध्यम से बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से अच्छे संस्कार व्यक्ति को मजबूत बनाते हैं, यही बात आती है कि समाज में अच्छे संस्कारों का क्या महत्व है। श्रोता साथियों, एक समाज तभी मजबूत बनता है जब वहाँ रहने वाले लोग जिम्मेदार और संस्कारी हो। अगर समाज में लोग एक दूसरे का सम्मान करें, नियमों का पालन करें, जरूरतमंदों की मदद करें, ईमानदारी से काम करें, तो वहाँ शांति सहयोग बना रहता है। लेकिन जहाँ संस्कार कमजोर पड़ जाते हैं, वहाँ झगड़े बढ़ते हैं, रिश्ते टूटते हैं, भ्रष्टाचार बढ़ता है, सामाजिक विश्वास कम होता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए अच्छे संस्कार समाज की मजबूती का आधार है।
1: जी हाँ, और इसी के साथ अंजलि, हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि केवल डिग्री प्राप्त कर लेना ही शिक्षा नहीं होता। वास्तविक शिक्षा तो वो है जो इंसान को अच्छा नागरिक और अच्छा इंसान बनाए। आजकल कई लोग उच्च शिक्षित होने के बावजूद दूसरों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। इसका कारण है कि उनके जीवन में संस्कारों की कमी है।
0: बिल्कुल,
1: वहीं दूसरी ओर कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी यदि संस्कारी है तो समाज में सम्मान पाता है। हम देखते हैं कि अच्छे संस्कार व्यक्ति के जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि संस्कारी व्यक्ति हर जगह आदर पाता है, लोग उसके साथ जुड़ना पसंद करते हैं। जहाँ विनम्रता होती है, सम्मान होता है, वहाँ रिश्ते लंबे समय तक टिकते हैं।
0: जी जी,
1: संस्कार व्यक्ति को अच्छाई और बुराई में अंतर समझाते हैं। यदि लोग ईमानदार और सहनशील होंगे अंजलि, तो झगड़े और अपराध कम होंगे।
0: बिल्कुल,
1: धन से केवल सुविधाएं खरीदी जा सकती है, लेकिन मन की शांति अच्छे संस्कारों से ही मिलती है। संस्कारों से सजा हुआ जीवन हर मुश्किल में साहस और अपनापन देता है। श्रोताओं, इसलिए आपसे कहना चाहेंगे कि आज सोशल मीडिया, दिखावा और भौतिकवाद के कारण हम जो बाहरी चमक दमक को महत्व दे रहे हैं, बच्चों और युवाओं पर इसका बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ रहा है।
0: बिल्कुल,
1: कई बार लोग सफलता पाने के लिए गलत रास्ते अपनाते हैं। वे सोचते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन इतिहास गवाह है श्रोता साथियों कि गलत तरीके से कमाया गया धन कभी स्थायी सुख नहीं देता।
0: बिल्कुल,
1: इसके विपरीत अच्छे संस्कार वाला व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ता, यही उसकी असली ताकत है। इसलिए कहा गया है कि धन की चमक कुछ पल की होती है, संस्कारों की रोशनी जीवन भर साथ देती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, जहाँ संस्कार होते हैं वहाँ रिश्तों में अपनापन होता है। विनम्र भाषा रिश्तों को मधुर बनाती है श्रोता साथियों। बड़ों का सम्मान परिवार को जोड़कर रखता है। धैर्य और समझ रिश्तों को टूटने से बचाती है। आज कई रिश्ते इसलिए कमजोर हो रहे हैं जागृति जी, क्योंकि सुनना और समझना कम हो रहा है। संस्कार इंसान को दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना सिखाते हैं। अच्छे संस्कार इंसान को सही रास्ते पर चलना सिखाते हैं। एक संस्कारी व्यक्ति जो होता है वह गलत तरीके से पैसा कमाने से बचता है, दूसरों का हक नहीं छीनता, जिम्मेदारी निभाता है और समाज के नियमों का सम्मान करता है।
1: बिल्कुल,
0: यही गुण समाज में भरोसा पैदा करते हैं। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से कि पहले के समय में दादा दादी और बुजुर्ग बच्चों को कहानियां और अनुभव के माध्यम से संस्कार सिखाते थे। आज संयुक्त परिवार कम होते जा रहे हैं, जिसके कारण बच्चों का बुजुर्गों से जुड़ाव भी कम हो रहा है। बुजुर्गों का अनुभव बच्चों के चरित्र निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनकी सीख जीवन भर काम आती है। और इसी के साथ हम देखते हैं जागृति जी कि मोबाइल और इंटरनेट ने जीवन को आसान तो बना दिया है, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी आई है। आज धैर्य कम हो रहा है, तुलना बढ़ रही है, दिखावा बढ़ रहा है और सम्मानजनक भाषा कम होती जा रही है। ऐसे समय में परिवार की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को तकनीक के साथ साथ संस्कार भी दें।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि अच्छे संस्कार मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। धन, पद और प्रसिद्धि समय के साथ समाप्त तो हो सकते हैं, लेकिन संस्कार जीवन भर व्यक्ति के साथ रहते हैं।
0: बिल्कुल,
1: यही संस्कार उसे समाज में सम्मान, विश्वास और प्रेम दिलाते हैं। सच्चा स्वराज केवल बाहरी स्वतंत्रता नहीं, बल्कि भीतर की अच्छाई और चरित्र की स्वतंत्रता है।
0: बिल्कुल,
1: जब हर व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे संस्कार अपनाएगा, तभी समाज में शांति, प्रेम और सद्भावना स्थापित होगी। इसलिए श्रोता साथियों, हमें बच्चों को केवल सफल नहीं बल्कि संस्कारी बनाने पर ध्यान देना होगा, क्योंकि संस्कार ही वो अमूल्य दौलत है जो व्यक्ति को इंसानियत का सही अर्थ समझाती है। आपसे कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि अच्छे संस्कार किसी तिजोरी में रखी जाने वाली संपत्ति नहीं, बल्कि मनुष्य के चरित्र में बसने वाली वो अमूल्य दौलत है जो जीवन के हर मोड़ पर उसका साथ निभाती है।
0: बिल्कुल,
1: पैसा इंसान को सुविधाएं दे सकता है, जैसा कि हम समय समय पर और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बता रहे हैं, लेकिन सम्मान, विश्वास और केवल संस्कार ही दिलाते हैं। जिस व्यक्ति के पास अच्छे संस्कार होते हैं, वो कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों से नहीं डिगता और दूसरों के जीवन में भी उजाला फैलाता है। आज आवश्यकता केवल शिक्षित समाज की नहीं अंजलि, बल्कि संस्कारी समाज की है। यदि घर में बच्चों को ईमानदारी, दया, विनम्रता, जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाया जाए, तो हमारा देश वास्तव में सच्चे स्वराज की ओर बढ़ सकता है। क्योंकि स्वराज केवल अधिकार पाने का नाम नहीं होता, बल्कि अपने कर्तव्य और नैतिक मूल्यों को समझाने का भी नाम है। इसलिए श्रोता साथियों, हम धन कमाने के साथ साथ अच्छे संस्कारों को भी अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बनाएं। हम ऐसा समाज बनाएं जहां इंसान की पहचान उसके कपड़े, पैसे या पद से ना हो, बल्कि उसके व्यवहार और चरित्र से हो।
0: बिल्कुल जागृति जी, अगर यदि हम चाहते हैं कि आने वाला समाज प्रेम, विश्वास, अनुशासन और इंसानियत से भरा हो, तो इसकी शुरुआत आज से और अपने घर से ही करनी होगी। क्योंकि अच्छे संस्कार केवल व्यक्ति का भविष्य नहीं बदलते, वे पूरे समाज की पहचान और दिशा तय करते हैं। अच्छे संस्कार किसी भी समाज की वह अनमोल पूंजी होते हैं जो पीढ़ियों को जोड़ कर रखती है। वे इंसान को केवल सभ्य व्यवहार नहीं सिखाते, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय लेने की समझ भी देते हैं। जब किसी व्यक्ति के भीतर विनम्रता, ईमानदारी, धैर्य, सहानुभूति और जिम्मेदारी जैसे गुण होते हैं, तब वह केवल अपने परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे समाज का भरोसेमंद हिस्सा भी बन जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: आज दुनिया तेजी से बदल रही है श्रोता साथियों। आधुनिकता और तकनीक ने जीवन को आसान तो बना दिया, लेकिन साथ ही लोगों के बीच दूरी, स्वार्थ और दिखावे की प्रवृत्ति बढ़ाई है। ऐसे समय में अच्छे संस्कार ही वह शक्ति है जो इंसान को जमीन से जोड़े रखते हैं। संस्कार हमें याद दिलाते हैं कि जीवन की असली सफलता केवल आगे बढ़ने में नहीं, बल्कि दूसरों को साथ लेकर चलने में है।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि अंजलि, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की, अब देख पा रहे हैं कि समय उछला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा हम जरूर लेंगे, पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ,

0: साथ ही इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: अरे गोरी, इतनी सुस्त क्यों दिख रही हो? कुछ खाया पिया नहीं है क्या?
1: अरे दीदी, क्या करूं? कुछ खाने पीने का तो मन ही नहीं करता है मेरा।
0: अरे गोरी, ये तो गर्भावस्था में होता ही है। जी मचलाएगा, खाने का मन नहीं करेगा, पर अभी तो खाना ज्यादा जरूरी है। और खाने में भी तुम्हें दूध, दही, दालें, हरी सब्जियां खानी चाहिए। इससे तुम्हारे बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा।
1: अरे वाह दीदी, अगर ये सब खाने से बच्चे का विकास अच्छा होगा तो मैं आज से ही दूध पीना शुरू कर दूंगी और साथ में हरी सब्जियां और दाल भी खूब खाऊंगी।
0: ये हुई ना बात गोरी।
2: याद रहे, गर्भावस्था में सबसे जरूरी है पोषक खाना। वागर रेडियो द्वारा जनहित में

0: लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: भाई ने बोलो, आप एक कार्य विचार करियो है कि जैया पेड़ की छाव में आप रह या

0: कार्यक्रम घूमर हमरावारी अमर हित बोन ने आपनी बोन मनीषा
1: ने आपनी बोन अंजलि नु
0: राम राम होवे बोनो आप सब हमले रिया हो आपड़ो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM ने आप सभी ने स्वागत करे हो हमारे आज ने कार्यक्रम घूमर में
1: होवे बोने जिम के में दर बुधवार ने दर शनिवार लेने हाजिर थे सह कार्यक्रम घूमर ने लेने एक नया विषय ने हाथे तो मनीषा बोन आसर कार्यक्रम में अपने भाईन बोनो तक की बातचीत नो विषय है के आ गर्मी साली रही है एवं आपड़ी जो बोने हैं ये अपने स्वास्थ्य नु ध्यान हरते राखे
0: होवे
1: क्योंकि आपड़े देखी रहो के गर्मी नो जो मौसम है ये आपड़े हाथे तेज धूप लू थकान पसीनो घना कनी स्वास्थ्य संबंधी समस्या लेने आवे है
0: होवे
1: ने आनो प्रभाव हर मनक माते पड़े है पर आपड़ी जो बोने है एना ने माते आनु असर जो है ये अपना ने वधारे देखवा में मले है क्योंकि आपड़े देखो हो के ग्रामीण हो या शहरी बे क्षेत्र में अपनी जो बोने हैं ये घर ने बारते ने जिम्मेदारी निभावे हैं ने अक्सर इन्हें कारण ही अपना स्वास्थ्य नी अनदेखी करी दे हैं इन्हें साथे ही परिवार ने देखभाल भी करे हैं ने एनन सब ने वैस में ई खुद नु खान पान आराम ने पर्याप्त जे नींदर जुए एनन माते ध्यान नती आली पाती ताजे अपने कार्यक्रम में जानांगा आज तेज गर्मी थई रही है इनमें अपनी बोन अपने स्वास्थ्य नो ध्यान हरते राखी सके
0: होवे अंजलि बोन तो अना विषय मते अपने भाई बोनो कते घणा अक्कानी वाते रिंगा अबर हमड़ा अगीत ने मोरे कर अपनी वाते
1: होवे तो बोने आप हमबरते रेजू आपड़ो रेडियो अपनी वाते वाकड़ रेडियो 90.8 FM माते।

हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो फॉगर रेडियो 90.8 FM पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम सपनों की उड़ान में जब भी हम हाजिर होते हैं तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे ढेर सारी बातें होती हैं। आज का जो विषय है वो भी कुछ ऐसा ही है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे धीरे चलना गलत नहीं है, रुक कर संभलना कमजोरी नहीं, और हर अंधेरा हमेशा नहीं रहता। जानेंगे आज कार्यक्रम में हमारे जीवन से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में कि जब मन किसी काम में नहीं लगता तो हम क्या करें। ढेर सारी बातें बनी रहेंगी, लेकिन अभी कार्यक्रम के दस्तूर को निभाते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला एक गीत। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, इस गीत के बाद एक बार फिर से मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सपनों की उड़ान में, जहाँ हम बात करते हैं जिंदगी से जुड़े उन एहसासों की, जिन्हें हम महसूस तो करते हैं लेकिन अक्सर कह नहीं पाते। जी हाँ दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका मन किसी काम में नहीं लगता? सब कुछ सामने हो, सपने भी हो, जिम्मेदारियां भी हो, लेकिन फिर भी दिल कहे बस अब नहीं। अगर हाँ तो दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस चुप्पी की, उस थकान की जो बाहर से दिखाई नहीं देती। दोस्तों, कई बार जिंदगी में ऐसा दौर आता है जब इंसान बिना वजह चुप रहने लगता है, ना किसी से बात करने का मन करता है, ना ही हंसने का और ना ही कोई काम करने का। सुबह उठते ही लगता है कि फिर वही दिन, फिर वही भागदौड़। और सबसे मुश्किल बात क्या होती है जानते हैं श्रोता साथियों आप? ये होती है कि लोग समझते हैं कि इंसान आलसी हो गया है, जबकि सच ये होता है कि उसका मन अंदर से थक चुका है। क्योंकि हर थका हुआ इंसान आलसी नहीं होता। कई लोग जिम्मेदारियों का वजन उठाते उठाते अंदर से चुप हो जाते हैं। कभी पढ़ाई का दबाव, कभी नौकरी की चिंता, कभी घर की जिम्मेदारियां, कभी दूसरों से तुलना। साथियों, इन सारी चीजों की वजह से इंसान धीरे धीरे खुद को भूलने लगता है। आज का युवा सबसे ज्यादा मुस्कुराता भी है और सबसे ज्यादा अंदर से टूटा हुआ भी होता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर सबकी जिंदगी खूबसूरत दिखाई देती है, लेकिन वहाँ कोई भी बेचैन रातें नहीं दिखाता, कोई अपने डर को नहीं दिखाता, कोई अपने टूटे हुए सपनों की तस्वीर नहीं डालता। क्योंकि किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि कभी कभी हम दूसरों की चमक देखकर अपनी रोशनी को कम समझने लगते हैं, और यहीं से शुरू होती है जिंदगी की असली थकान। क्योंकि मन भी इंसान की तरह थकता है। जब लगातार कोशिश करने के बाद भी साथियों सफलता न मिले, जब अपनों से उम्मीद टूट जाए, जब खुद की मेहनत बेकार लगने लगे, तब मन धीरे धीरे शांत नहीं बल्कि खाली होने लगता है। और यही खालीपन इंसान को हर काम से दूर कर देता है। लेकिन दोस्तों, यह जिंदगी का अंत नहीं होता है, यह सिर्फ एक संकेत है कि अब आपको खुद का

ख्याल रखने की जरूरत है। हर समय मजबूत बने रहना जरूरी नहीं है। अगर मन थक गया है तो थोड़ा रुक जाना गलत नहीं है। पेड़ भी सूखे मौसम में कुछ समय शांत खड़े रहते हैं ताकि फिर से हरे हो सके। इसलिए दोस्तों, छोटी छोटी बातें जो मन को फिर से मजबूत बना सकती है, उनके लिए हमें खुद को थोड़ा समय देना होगा। और हमारा भी समय अब हो गया है ना कि हम एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन कर ले, ताकि कार्यक्रम में जो बातें चल रही हैं उनका मजा लेते हुए थोड़ा सा हमारा भी मन हल्का हो जाए। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप बने रहिएगा आपकी अपनी दोस्त अंजलि पारेश्वर के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको कहा था कि पेड़ भी सूखे मौसम में कुछ समय शांत रहते हैं ताकि वे फिर से हरे हो सके। तो दोस्तों, इसके लिए हमें हमारे जीवन में छोटी शुरुआत करनी होगी। जब मन बिल्कुल काम न करे तब पूरी मंजिल मत सोचिए, बस एक छोटा सा कदम उठाइए, सिर्फ 10 मिनट पढ़िए, सिर्फ एक जरूरी काम कीजिए, धीरे धीरे मन दोबारा चलने लगता है। बड़ी उड़ाने दोस्तों हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है, इसलिए पहला कदम छोटा होना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि हर इंसान की जिंदगी का समय अलग होता है, कोई जल्दी सफल होता है, कोई धीरे होता है, लेकिन देर से खिलने वाला फूल भी उतना ही सुंदर होता है। इसलिए साथियों, अगर किसी और की रफ्तार तेज है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप पीछे हैं, क्योंकि अक्सर हमारे जीवन में यही होता है। अगर हमारे साथ में पढ़ने वाला कोई हमारा मित्र है या कोई हमारे परिवार का सदस्य है, वो अगर जल्दी सफल हो जाता है तो घर परिवार के लोगों से, समाज के लोगों से और हमारे खुद के अंदर भी ये सवाल आने लगता है कई बार कि वो तो इतना सफल हो गया और मैं अभी तक यहाँ पर क्यों हूँ। तो दोस्तों, आपको कहना चाहूंगी कि हर इंसान की क्षमताएं अलग होती हैं और हर इंसान की जिंदगी का समय भी अलग होता है। जब हमारा समय आएगा तब हमें हमारे जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी, उसके लिए हमें प्रयास करते रहना है। ऐसा नहीं है कि समय आएगा तब मिल जाएगा और उसको लेकर हम प्रयास ही न करें। प्रयास करते रहिए, सफलता का समय अवश्य आएगा। और इसी के साथ साथियों, अपने मन की बात कहिए। कभी कभी सिर्फ रो लेने से भी दिल हल्का हो जाता है। अपनी बातें अंदर दबाकर मत रखिए, किसी दोस्त से कहिए, किसी अपने से कहिए या खुद से बात कीजिए, क्योंकि चुप्पी कई बार इंसान को अंदर ही अंदर कमजोर कर देती है। याद रखिए दोस्तों कि आप कोई मशीन नहीं है, कि हर समय खुश रहना जरूरी है, हर दिन अच्छा हो यह भी जरूरी नहीं होता, लेकिन हर मुश्किल दिन के बाद एक नया दिन अवश्य आता है। अगर आज आपका मन थक गया है तो खुद को खत्म मत समझिए। हो सकता है कि आपका दिल सिर्फ थोड़ा आराम मांग रहा हो। तो श्रोता साथियों, कहना चाहूंगी कि सपने देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन सपनों के पीछे भागते भागते खुद को खो देना सही तो नहीं है ना। आपकी कीमत सिर्फ आपकी नौकरी, अच्छे नंबर या सफलता से तय नहीं होती है। आप जरूरी हैं, आपकी मुस्कान जरूरी है और आपका मानसिक संतुलन जरूरी है, क्योंकि किसी ने क्या खूब ही कहा है कि जिंदगी सिर्फ मंजिल पाने का नाम नहीं है, खुद को संभालते हुए आगे बढ़ने का नाम भी है। अगर आपके आसपास कोई भी व्यक्ति चुप रहने लगा है, हर समय उदास दिखता है, किसी काम में मन नहीं लगा पा रहा, तो उसे आलसी कहने से पहले उसका हाल जरूर पूछिएगा दोस्तों। कई बार एक प्यार भरी बातचीत किसी टूटे हुए इंसान को फिर से जीने की वजह दे सकती है। दोस्तों, जिंदगी में ऐसे दिन आना गलत नहीं है कि जब मन किसी काम में न लगे। गलत तब होता है जब इंसान खुद से उम्मीद छोड़ देता है। इसलिए याद रखिए, धीरे चलना हार नहीं है, रुककर संभलना कमजोरी नहीं है और अंधेरा कभी हमेशा नहीं रहता। आपकी जिंदगी अभी बाकी है, आपके सपने अभी जिंदा है और शायद आपकी सबसे खूबसूरत सुबह अभी बाकी है। इसलिए दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि इंसान हमेशा एक जैसा महसूस नहीं कर सकता। कभी मन उत्साह से भर जाता है तो कभी बिना वजह खाली खाली सा लगने लगता है, लेकिन यह खालीपन हमेशा कमजोरी नहीं होता। कई बार यह हमारे मन की आवाज होती है जो हमें धीरे से यह बताना चाहती है कि अब खुद को समझने, थोड़ा रुकने और खुद का ध्यान रखने का समय आ गया है। आज की तेज भागती दुनिया में लोग काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन अपने मन की हालत को समझने का समय खोते जा रहे हैं। हर कोई सफल दिखना चाहता है, मजबूत दिखना चाहता है, लेकिन सच ये है कि हर इंसान के भीतर कोई न कोई संघर्ष चल रहा होता है। इसलिए जब कभी आपका मन किसी काम में न लगे तो खुद से नाराज होने की वजह खुद के साथ थोड़ा नरम व्यवहार कीजिए। हो सकता है कि जिंदगी आपको रोककर कुछ सिखाना चाहती हो। हो सकता है दोस्तों कि यह समय आपको और मजबूत बनाने आया हो, और हो सकता है कि जिस ठहराव को आप कमजोरी समझ रहे हैं वही आगे चलकर आपकी नई शुरुआत बन जाए। इसलिए याद रखिए कि सूरज भी हर शाम ढलता है, लेकिन
अगली सुबह फिर लौट आता है। ठीक उसी तरह इंसान भी मुश्किल दौर से गुजरकर दोबारा संभल सकता है, इसलिए उम्मीद का हाथ कभी मत छोड़िए, अपने मन को सुनिए, अपने सपनों को थोड़ा समय दीजिए और खुद पर भरोसा बनाए रखिए, क्योंकि जिंदगी उन लोगों के लिए हमेशा रास्ते बनाती है जो थकने के बाद भी चलना बंद नहीं करते। तो साथियों, यह थी हमारी आज के कार्यक्रम की महत्वपूर्ण बातें। आशा करती हूँ कि आपको अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले एक और प्यारे से गीत के साथ में मैं आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी। तो आइए सुनते हैं इस गीत को।

साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे कार्यक्रम सपनों की उड़ान से विदा लेते हैं। आपको कार्यक्रम में होने वाली बातचीत, गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, स्वागत रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: जज्बात का रिश्ता है जो बाकी सब रिश्तों से बड़ा होता है। इन्हीं जज्बात को हम गजल की जबान में मोहब्बत कहते हैं। अर्ज है, कुछ होश नहीं रहता, कुछ ध्यान नहीं रहता, इंसान मोहब्बत में इंसान नहीं रहता।

0: Seema?
1: Hmm?
0: Hi.
1: Hi.
0: Mera naam to janti ho na tum?
1: Nahi to.
0: Khair, main Ajay. Ajay Singh.
1: To?
0: To... मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था।
1: कहो।
0: यहाँ?
1: क्यों? यहाँ क्यों नहीं?
0: कहीं और चलते ना।
1: कहीं और क्यों? जो कहना है, यहीं कह दो।
0: अच्छा। हम एक दूसरे को जानते तो हैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब है, हम लोग एक दूसरे को ठीक से नहीं जानते हैं। तो मैं तुमसे मिलना चाह रहा था और
1: बस मेरी बस आ गई।

तो साथियों, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी हमारी आपसे अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल को। नमस्कार।